समुंद शाह सुल्तान गिरह से मनोहना मिश्र।

हबीबे हक जो करम के मोती लुटा रहा है वो मुस्तफ़ा है, जो बारिश सन में मुजस्सम दुआ बना है वो मुस्तफ़ा है।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना ए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापां ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: Welcome back after this beautiful song. And of course, Sunrise Radio 103.2 FM is what we have tuned in right now. Once again, a big good morning to you. My name is Abby and there's a lot of more music coming up in your way. I hope you are having a great start of this morning. And on that note, you deserve another beautiful song. So there you go.
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है और डब पे आप ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट यॉर्कशायर वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं वेबसाइट पर सुनना चाहें तो हमारा एड्रेस रहेगा www.sunrise.radio। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक। अब से लेकर 1 बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। 1 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। फैंसी अ बिट ऑफ फन? विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर। प्ले नाउ एट sunrise.radio एंड जॉइन द फ्री सनराइज डिस्कस क्लब टू अनलॉक इवन मोर। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं और वैसे तो ये फेवरेट गीत है गुलाम भाई का तो उनके नाम भी कर देते हैं। और अभी हमने प्रोग्राम नहीं शुरू किया था तो हीरा खान साहब का फोन था उनके नाम भी कर देते हैं और सभी सुनने वालों के नाम कर देते हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारी घड़ियां बता रही है जनाब स्टूडियो की 11:15 यानी कि 11:15। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आपके दोस्तों के नाम गीत करता हूँ जो कमर्शियल के बाद होगा। प्यारी बेना सादिया जी, हाजरा जी आपके नाम भी, साइमा जी आपके नाम भी, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: 24 बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

जी दोस्तों, अभी आपने मुगल अग्रवाल और अलका यग्निक की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते एक और प्यारे से गीत की जानिब और वो गीत प्यारी बहना सोनिया, आपने बर्मिंघम से फ़ोन किया, शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, आपके नाम ये गीत करते हैं। इरा खान साहब, आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम भी करते हैं। और उसके बाद इस वक्त रीटा बेटिया अमेरिका में सुन रही हैं, उनके नाम करेंगे, उनकी जानिब से उनकी मम्मी नौतान साहबा के नाम करेंगे और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। मूना जी, आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कुमार सानू और आशा भोसले की प्यारी सी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और हमें फ़ोन किया जनाब प्यारी बहना नौतान साहबा, शुक्रिया फ़ोन करने का। थोड़ी देर के बाद आपके लिए ज़रूर गीत कोई प्ले करेंगे। और उसके बाद वाजिद भाई एड्रेसफील्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा। अब्दुल करीम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने भी अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहा, तो सबके नाम गीत करेंगे कमर्शियल के बाद जो गीत होगा। वैसे तो आपने पुराने गीत की फरमाइश की, तो पुराने गीत की बारी पौने पे आती है तो ज़रूर प्ले करेंगे आपकी जानिब से, शुक्रिया। उसके बाद जनाब हमारे प्यारे भाई गुलाम भाई ने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। और इन्हें कहा कि शुरू में ही हमें फ़ोन कर दिया करें, ताकि जब आप फ़ोन करते हैं हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी बातें बहुत प्यारी होती हैं। तो जनाब ताकि मैं फिर अच्छे अच्छे गाने आप सबको सुनाऊं। तो गुलाम भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम होगा। और उसके बाद इसी गीत को जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम करते हैं, इकमाज़, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, मेहर, बाबर, इफ़राज, इन सब के नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो समरा रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कुमार सानू की मत भरी आवाज में। और जनाब, अब जो गीत आने वाला है प्यारी बहना सादिया जी, हाजर जी आपके नाम भी, और उसके बाद इसी गीत को इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं जो गीत सुनना चाहती हैं, स्पेशली इकरा जी, आप नजमा, इफ़त, नाजिया, मीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए गीत सुनना चाहती हैं, तो आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ अमरीन साहब ये गीत आपके नाम भी करेंगे, और नतान बहना आपके नाम भी, आप पुराने गीत पसंद करती हैं, बस पुराने गीत की बारी आने वाली है, वो भी आपके नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं अब अलका याग्निक और उदर नारायण की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत, तो इंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने उदय नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और अब जनाब क्या है कि टाइम चेक कर लेते हैं पहले।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 11। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद एक कवाली होगी जनाब, क्योंकि हीरा खान साहब ने फरमाइश कर डाली जनाब, काम पे जा रहे हैं और साथ में रेडियो को भी सुन रहे हैं और कह रहे हैं यार वो जंजीर फिल्म की कवाली लगा दो। तो जनाब आपका हुक्म सर आंखों पर, हीरा खान साहब। तो आप अपने तमाम दोस्तों के लिए, स्पेशली तालुक जुल्फी और जनाब मलक इसहाक साहब के लिए सुनना चाहते हैं, और इसी गीत को हीरा खान साहब के साथ साथ अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑल वाले आपके नाम करते हैं, और उसके बाद नुतान बेना आपके नाम भी करना था। चलिए इस क्वाली को भी इंजॉय कीजिएगा, और स्पेशली गुलाम भाई आप भी मेरी जन्म से ये कबूल कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब सफीउल्ला भाई और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, उन सब के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे जनाब बहुत ही प्यारी सी कवाली, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

कहते हैं बोलना पड़ गया क्योंकि हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर मीरपुर में अपने दोस्तों के साथ बैठे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और सभी दोस्तों को सलाम अर्ज कर रहे हैं। जो भी उनके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं सबको उनकी जानिब से चौधरी मनीर साहब चक्की वाले जो हैं उनकी जानिब से सलाम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का और प्रोग्राम में शमूलियत का। तो जनाब आपके नाम करते हैं, ये वैसे भी दोस्ती वाला गीत था और हीरा खान साहब ने फरमाइश की हुई है, तो जनाब राइट टाइम पे हीरा खान साहब ने फ़ोन किया और इसकी फरमाइश की और राइट टाइम पे आपने ही

0: जनाब हमें बताया कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और जनाब दोस्तों के नाम गीत करना चाहते हैं, तो यारी वाला गीत है जनाब, तो अच्छा हुआ ये आपके नाम भी हो गया, आपकी जन्म से आपके दोस्तों के नाम भी हो गया। तो आपका इंतज़ार हो रहा है जनाब, कब वापस आएंगे, बहुत मिस कर रहे हैं चौधरी साहब आपको। तो जनाब चलते हैं, अब दोस्तों सुनते हैं जनाब ये मनड़े और साथियों की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत हीरा खान की पसंद पे।
1: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

वाह क्या गीत था, क्या गीत था। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों अब जो टाइम है बड़े नाजुक मोड़ पे है, तो अब कोई गीत ऐसा होना चाहिए छोटा सा हो, ताकि आप दोस्तों के लिए जो है वो पूरा मुकम्मल गीत हो जाए, खबरें आने वाली हैं। तो मोहम्मद जनाब अंसर महमूद भाई, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई ने फ़ोन किया बड़े अरसे के बाद। वैसे तो गपशप होती रहती है, लेकिन रेडियो पे आपने बड़े अरसे बाद फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए पहले आवाज़ नहीं पहचान पाया। तो जनाब शुक्रिया। और आप क्योंकि हमने खाना पूरी करनी है इस वक्त, क्योंकि टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो इस वजह से कोई अपनी पसंद का गीत चुन के नहीं लगा सकता अंसर भाई। तो फिलहाल इस गीत को इंजॉय कीजिएगा। और चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके। और खान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं और दोस्तों अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत जो हैं वो आप दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ क्योंकि यही आवर है डेडिकेशन का क्योंकि अगले आवर में यानी कि प्रोग्राम के आखिरी आवर में एक और दो के दरमियान जो वक्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स का होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे इसलिए जो दोस्त शायरी का शौक रखते हों या गीत गुनगुनाने का तो ज़रूर आइएगा एक बजे की खबरों के बाद The Sunrise Radio Listener's Choice Awards 2026 are coming soon. Celebrating the businesses, organizations and venues, artists you love. Voting will be exclusive to Listener's Club members, so join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ गुरदास मान की प्यारी सी आवाज़ में और ये बहुत सारे ढेर सारे लोगों का फेवरेट गीत है सबसे ज़्यादा फेवरेट गीत है ये हमारी प्यारी बेना सादिया जी उनका फेवरेट है उनके साथ हैं आजरा जी उनके नाम भी करेंगे गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम करेंगे और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह दत्ता हुमैर बाबर और इफराज और इसी गीत को इस वक्त से एडिया काम कर रही है नजमा इफत नाजिया अमीदा रुबीना बुशरा इकरा ताजीम जाहिदा और साइमा उनके नाम भी और जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं आप सब के नाम करते हैं ये गुरदास मान और साथियों की आवाज़ों में प्यारी सी कवाली सभी दोस्तों की फेवरेट है तो सब के नाम तो कर दी अगर कोई बीच में रह गया तो उसके लिए माजरत तो चलते हैं सुनते हैं
1: Hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers With a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना गुरदास मान और साथियों की आवाज़ों में, और हम गप लगा रहे थे अपने प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब से, और इस वजह से फिर थोड़ा डिले हो गया। सीमा जी, आपने भी कॉल की, माजी चाहते हैं, मैं आपकी कॉल नहीं ले पाया हूं। तो जनाब कमर्शियल के बाद जो गीत होगा सीमा जी, आपके नाम भी होगा, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके दोस्तों के नाम भी होगा, खान भाई, और ये गाना फेवरेट है मलिक इम्तियाज़ साहब की पूरी टीम का, उनके नाम करेंगे, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज, आपके नाम भी, और गुलाम भाई आपके जानिब से आपके स्टाफ के नाम, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, अमरीन साहब आपके नाम भी। तो चलते हैं सुनते हैं, और अंसर महमूद साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, और हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सुन रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। और मीरपुर में शहजाद साहब आप भी सुन रहे हैं, और आप आसिम भाई के लिए जो ओल्डम में, उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम भी करेंगे।
1: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। एक और प्यारा सा गीत आ रहा है और ये गीत मलिक इम्तियाज साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम के नाम और नदीम मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया फोन करने का और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और जनाब बड़ी बेचैनी के साथ हम जो हैं वो आपका इंतज़ार करेंगे एक के बाद। तो बड़ी बेचैनी का कहा तो मुझे एक गाना भी याद आ गया, कितने बेचैन होके, चलिए वो बाद में लगा देते हैं। फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा और ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम करूँगा, जहाँ कहीं भी हैं आप, मेरी जन्म से ये गीत आपके नाम। और चौधरी मुजफ्फर साहब आज काम पे हैं आप, तो रेडियो को भी साथ सुन रहे हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको गाने अच्छे लग रहे होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। गुलाम भाई तो कहते हैं जब हमारा प्रोग्राम का टाइम शुरू होता है तो उनका वक्त भी बहुत फिर अच्छा गुजरता है। तो आप दोस्तों की वजह से हमारा ये 3 घंटों का जो सफ़र होता है इसका भी पता नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। अल्लाह आप सबका और हमारा आपके साथ, आपका हमारे साथ, ये साथ जो है कायम दायम रखे। तो एंजॉय कीजिएगा अलका याग्निक और कुमार सानू को।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में। और दोस्तों अब वक्त कमर्शियल का हो चुका है, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। खान भाई, आपने कल भी फरमाइश की थी क्योंकि ये गीत अमूमन हम लगाते रहते हैं, लेकिन आपका ये फेवरेट गीत है, आपने कल भी फरमाइश की थी, कल को टाल दिया था, आज आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ जनाब। और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, और आपके साथ साथ कमल साहब आपके नाम भी, और यही गीत नुतान बहना और रीटा बेटिया आपके नाम भी, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम। तो चलते हैं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत कमर्शियल के बाद, तो इन्जॉय कीजिएगा गीत को।

श्रिया घोषाल और उदर नारायण की प्यारी सी आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानेब। और ये गीत नजर करना चाहेंगे सायमा जी आपके नाम और आपके साथ साथ इसी गीत को इस वक्त बाबर शॉप पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हों उनके नाम भी, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, गुलाम भाई आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने जो है गीत को पसंद किया होगा। चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं अब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद जनाब एक सदाबहार पुराना गीत होगा और वो होगा नईद अख्तर की प्यारी सी आवाज़ में। तो उसको नज़र करना चाहेंगे। अली भाई की तरह से आप फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम करेंगे। और सिकंदर यानी कि बाबर शाह पे तीन शहजादे, बशारत अली, सिकंदर अली और आरफ अली आप काम कर रहे हैं। सिकंदर अली, आपने कहा कि आपके मेहमान आए हुए हैं आपकी दुकान पे रोजडेल से, जनाब शेख यासर साहब, उनके लिए भी आप गीत सुनना चाहते हैं, तो उनके नाम भी करेंगे। मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम, नदीम मंसूर साहब, सीमा जी, चौधरी मुजफ्फर और खान भाई, तो तनवीर अख्तर साहब आपने भी फ़ोन कर रखा है, आपके नाम भी करेंगे, शुक्रिया फ़ोन करने का। और अब्दुल क्यूम साहब, फ्राइजिंग हॉल वाले, आपके नाम, हीरा खान साहब और ग़ुलाम भाई और सोनिया बहन और जनाब तारज़ुल्फ़ी साहब और दीगर दोस्तों के, महबूब लाई साहब, दीगर दोस्तों के नाम, सफ़ीउल्लाह भाई। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल और इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं?

0: सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
1: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
2: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

अभी आपने दोस्तों नईद अख्तर की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना और अब ये गीत हमें खबरों तक ले जाएगा और खबरों के बाद जब लौटेंगे तो लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो जनाब ये इस आवर का आखिरी गीत आप तमाम दोस्तों के नाम, छोटा सा गीत चाहिए क्योंकि खबरें आने वाली हैं ताकि पूरा गीत आप सुन पाएं। तो चलते हैं सुनते हैं इसको।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं और ये हिस्सा जो होता है ये दोस्तों का होता है जो लाइव कॉल्स में आते हैं, जो शायरी करते हैं या फिर कोई गीत गुनगुनाते हैं, तो उनका ये सिलसिला है और उनका ये प्रोग्राम है। तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। और अभी से जुड़ गए हमारे साथ जनाब चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से। तो चलते हैं, आप हिट ऑफ द आवर सुनते हैं और हिट ऑफ द आवर के बाद दोस्तों इन दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में सुना और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 1:12 यानी कि 12:01 और जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से चौधरी फिलहाल साहब जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ नदीम मंसूर साहब भी जुड़ गए हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद इन दोस्तों से मिलते हैं।
2: 24 बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, जैसा कि कहा कि ये आखिरी जो आवर होता है लाइव कॉल्स का होता है, जिसमें आप दोस्त अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। जैसा ये भी कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर जुड़ोई से चौधरी फरियाद साहब और ब्रैडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब। तो चलते हैं तालियों की गूंज में। कश्मीर में चलते हैं जहाँ चौधरी फरियाद साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: बिस्मिल्लाह
0: करा जी करा ते वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह सुनियो,
5: तबीयत
0: की हाल जे? बस पापा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहिए, जरूरी कहना चाहिए,
5: क्योंकि इंसान वैसे बड़िया तकलीफा होनी ने, परेशानियां होनी ने, अदमाशा भी होनी ने। सो जाहिर है मसले मसायल, चलो जिस तरह अल्लाह ताला ने जात कुछ है जिस तरह वो रखा है, बल्कि बंदे की रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
5: जिस तरह अल्लाह रखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: चलो पापा, कई दफा सेहत खराब भी हो जानी है, कई दफा ठीक भी हो जानी है। कई लोग ऐसे जिन्हें तक बंदा सोचना, असा तो इन्होंने लखा दर्जे बेहतर आज
0: सही। बिल्कुल,
5: चलो
0: अल्लाह बेहतर करे।
5: परवेज भाई ने, महबूब लाई साहब ने, दसर साहब ने, अजय सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले ने, वाजिद भाई ने, अयुब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, अब्दुल कयूम भाई ने, नवीद राणा साहब ने, जनाब तारक बट साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसफ रियासत साहब ने, डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब ने, एम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने मेरे पीछे मेरा बहुत बहुत सलाम, राजा वकास ने, राजा जुल्कमैन ने और राजा शहीद साहब ने और जनाब सिकंदर अली बिशारत अली आरफ अली बल्कि सब दोस्तों की मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: हाँ चौधरी मुजफ्फर साहब भी सुन रहे ने, तो पहले सलाम भेजा है उन्होंने और जनाब आज कम ते ने ना ते रेडियो सुन रहे ने।
5: अच्छा
0: जी जी
5: चलो जी उन्होंने की तरह फिर सलाम
0: जी।
5: काफी दिन के सारे मारे बड़े अच्छे दोस्त ने लेकिन काफी अरसे तो उन्होंने रबता कोई नहीं होना
0: क्योंकि नेट बंद होने की वजह। जी जी
5: जी जी हाँ चलो तो बिस्मिल्लाह करो लिखने ने के कमली वाले ने जिथे बचाई जिथे कमली वाले ने कमली बचाई जिथे उन्ना तरसियां गारां दा वास्ता ही दरे आली ते जेड़े कुर्बान हो गए। दरे आली ते जेड़े कुर्बान हो गए उन्ना सुपा सलारां दा वास्ता ही तेन वास्ता करबल दे कैदियां दा आबद वर्गे बीमारां दा वास्ता ही अली हमजा नूं अली हमजा गुनगार नूं बख्श देवी ओए अपने यार दे यारां दा वास्ता ही।
0: वाह सुभान अल्लाह क्या बात
5: बेवफा नहीं कदी वफा करदे खून जिगर दा बेशक पलाई तको उठदे बहंदे रकीबां दे बज़म अंदर मनदे नहीं भावे मनाई तको।
0: वाह वाह
5: बेशक सरसों पे देंदे दीदार नाई लख वारी है सदी बलाई तको आख्या लन झूठे ते पंछिया झूठ समझो बेशक ते अपना बनाई तको।
0: वाह क्या बात
5: तेरे आखने ने क्या अपनी मर्जी दे मालिक हुसैन होंदे अपनी मर्जी दे हुसैन होंदे यारी बेशक बनाई तको भोले पाले तू बचा ले
0: हाय हाय आवाज गायब होगी लाइन ही मेरे ख्याल ही डिस्कनेक्ट होगी ये चौधरी फरियाद साहब की तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो शायरी कर रहे थे और बीच में उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो कुछ पल इंतज़ार करते हैं शायद वो दोबारा सिलसिला जोड़ने की कोशिश करें तो उनका सिलसिला जुड़ गया है। जी चौधरी साहब लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं इंतज़ार कर रहा था कि दोबारा सिलसिला जुड़े।
5: अच्छा, अच्छा।
0: जी सर
5: चलो चलो बिस्मिल्लाह ने के अपनी मर्जी दे मालिक हुसैन आंदे यारी ले यारी लाई बेशक अजमाई तको भोले पाले कर दे खूब चारे कदम उन्हां दे वल जरा बढ़ाई तको।
0: वाह वाह वाह क्या बात
5: होवे मर्जी दे देंदे दीदार बेशक जिथे रेंदे ने उथे तुसी जाई तको खुश रेंदे रकीबां दी बजम अंदर टुकड़े जिगर दे पंछी भावे खलाई तको।
0: वाह क्या बात क्या बात
5: आख्या फिर मेरे रोन दी गल ना कोई पुछो मेरे रोन दी गल ना कोई पुछो बारम नजर चुराई ते तां रोना करना मां सा जिसने जिसने दे बहु सारा
0: वाह
5: करना मां सा जिसने दे बहु सारा गया दिल दिखाई ते तां रोना।
0: वाह
5: जिस दी खातर में जान कुर्बान कीती उसने जान जलाई ते तां रोना माजर विच प्यार दे की दसा देंदी ताने खुदाई ते तां रोना।
0: हाय हाय क्या बात
5: आखरी शेर आने ने के जदों दा तेरे नाल प्यार होया जदों दा तेरे नाल प्यार होया सजना उदों ने दुखां विच जीने आपे कदी विच तनाई दे बह के ते परे जहर दे सागर भी पीने आपे।
0: वाह वाह क्या बात
5: कदों दुखां तो मिलसी निजात मैनू गिनने घंटे ते दिन महीने आपे तेरे इजर फराक विच के वाजद ओ यादां तेरियां संग सीने जलने अजमाने आपे।
0: वाह जी वाह चौधरी साहब कमाल होगी बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी जनाब तुसी सेहत ठीक ना होने के बावजूद प्रोग्राम विच तशरीफ लाए हो ते शुक्रिया तुहाडा जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखियो ते दुआओं याद रखियो सर बहुत शुक्रिया ओके सर
5: अल्लाह सुनने वाला
0: बहुत शुक्रिया रब रखा। ये थे जनाब चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान कश्मीर से इस वक्त वो यहाँ मौजूद थे प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है क्योंकि उनकी तबीयत आजकल ज़्यादा ही नासाज रहती है लेकिन उसके बावजूद वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और हम सब का दिल बहलाते हैं अपनी प्यारी बातों से और प्यारी प्यारी शायरी से। तो दोस्तों आप चलते हैं तालियों की गूंज में सुनते हैं नदीम मंसूर साहब को। नदीम मंसूर साहब आजकल छुट्टियां पे घर मौजूद हैं और नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अच्छा है आप छुट्टियों पे हैं, तो आप दोनों ऐसे थे कि दोनों को पहले ही ले जाने वाला होता हूँ मैं, क्योंकि आप काम पे होते हैं, वो पाकिस्तान से थे, आज मेरे लिए मुश्किल हो जाती। तो एनीवे अच्छा हुआ आप काम पे नहीं हैं, घर हैं, तो इसलिए आराम सुकून से हमने चौधरी फरियाद साहब को सुना और आपको जो है बगैर दिल पे पत्थर रखे हुए फिर होल्ड करते होते हैं, तो आज दिल पे पत्थर नहीं रखना पड़ा। तो जी कैसे हैं जनाब?
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं आपकी?
6: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र।
0: अच्छी गुजर रही है?
6: बहुत जबरदस्त।
0: ठीक है जनाब, ये दिन मौसम भी अच्छा रहा, आपकी छुट्टियां जो है वो सही मनु में जो है वो आपने बड़े प्यार से और जनाब अच्छे मौसम में मूड बंदे का अच्छा होता है, और कभी कभार ऐसा होता है काफ़ी बारिशें हो जाती हैं, ठंड काफ़ी होती है, तो बंदा अंदर ही दुबका रहता है और फिर कहता है यार क्या फ़ायदा छुट्टियों का, इससे बेहतर था मैं काम पे होता। तो ऐसा मौसम हो, इंजॉय वाला हो, तो फिर छुट्टियों का भी मज़ा दोबाला हो जाता है।
6: ये वही बात होगी ना, वो पंकज दास की गजल थी कि मौसम गुल भी कयामत की हवा देता है और दीवाने को दीवाना बना
0: देता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मौसम अच्छा हो, छुट्टियों हो, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है छुट्टियां मजा लेता है तो मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि बंदा सोचता है यार इससे तो बेहतर था मैं काम पे ही होता और ये छुट्टियां ना होती, तो छुट्टियां जाया गई मेरी ना।
6: जी बिल्कुल
0: जी। सजनो क्या लेकर आए हो?
6: अच्छा है तो टप्पे, लेकिन ये मुझे फरमाइश की थी कि दोबारा पढ़े जाएं।
0: अच्छा जी,
6: जानी आजकल छोड़ के।
0: किसने फरमाइश की आपको?
6: ये हमारी फैमिली में उन्होंने फरमाइश की,
0: उनका उनको साथ सलाम सर, क्योंकि ये टप्पे मुझे भी बहुत पसंद है होते हैं आपके, तो उनको साथ सलाम जिन्होंने फरमाइश की और आपको कहा कि फिर टप्पे सुनाइए, तो आज मेरे प्रोग्राम में का मजा भी दोबाला हो गया ना जनाब।
6: जरूर जरूर
0: जी जी जरूर।
6: ये आपकी नजर, सबकी नजर, उनकी नजर।
0: थैंक यू सर।
6: चन्ना जानी आज कल

0: हाय हाय निक्का जिया दिल माड़ा तोड़ के न जा, क्या बात है क्या बात है जनाब। और लगे हाथों आपसे कोई गाना भी सुन लें छोटा सा।
1: क्यों नहीं सुना देता हूँ।
0: गाना भी सुना देना कोई आज।
1: अच्छा चले,
0: क्योंकि दो घंटे तो है नहीं, अगले आवर में कुछ और सुनेंगे।
1: चले मैं आपको मोहम्मद रफी साहब का गीत सुनाता
0: हूँ। जी जी जरूर।
1: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई के जल

0: शुक्रिया।
1: जी वाह, शुक्रिया आपका जो आपने इतना प्यारा खूबसूरत गीत सुनाया रफ़ी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम मंसूर, अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं और हमारे जो है प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। आप की खूबसूरत आवाज़ जब हवा के दोष पर गूंजती है तो लाखों दिलों के दिल की धड़कने तेज़ कर देती है। बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जे थे जनाब नदीम मंसूर साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए। छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है जनाब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं महबूब इलाही साहब। तो चलते हैं जनाब, पहले सुनते हैं कमर्शियल, छोटी ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। 24 hours a day.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं महबूब इलाही साहब। तो जल्दी में चलते हैं तालियों की गूंज में, महबूब इलाही साहब को सुनते हैं। जनाब महबूब इलाही साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: कैसे हैं जनाब? ठीक हैं
5: अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? ठीक हैं?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं क्यों, टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे है। जी सर, क्या लेकर आए?
5: तो शायरी है, वो पेश करना चाहेंगे।
1: अच्छा
5: साहब को सुना, भाई मंसूर को सुना, अच्छा लगा। और सर हमी उनके नाम करना चाहेंगे।
1: जी
5: तुम भी मेरे जैसे हो।
1: क्या बात है।
5: बहुत चौधरी मुजफ्फर हैं, चौधरी तारक जफी हैं, महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, और भाई नवीद हैं, भाई जावेद मीर हैं, सफीउल्ला भाई हैं, अतीका जी हैं, गजाला जी हैं, और सभी सामिन के नाम और आपके नाम।
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी
5: है
1: जी।
5: मुद्दतों बाद मिले हो, बताओ तो कैसे हो।
1: वाह वाह वाह।
5: मुद्दतों बाद मिले हो, बताओ तो कैसे हो। परसों पहले जैसे थे, क्या तुम अभी वैसे हो?
1: वाह बहुत खूब,
5: थैंक यू। बरसों पहले जैसे थे, क्या तुम अब भी वैसे हो? क्या मतलब कि तुमको भी मेरी याद आती है?
1: हाय हाय।
5: क्या मतलब कि तुमको भी मेरी याद आती है? यानी कि मैं जैसा था यार, तुम भी वैसे हो।
1: वाह बहुत खूब।
5: यानी कि मैं जैसा था यार, तुम भी वैसे हो। तुमको भी इंतजार था कि मैं रब्ता करूंगा।
1: वाह।
5: तुमको भी इंतजार था कि मैं रब्ता करूंगा। तुम भी तो हद करते हो, तुम भी मेरे जैसे हो।
1: वाह क्या बात है।
5: तुम भी तो हद करते हो, तुम भी मेरे जैसे हो। तुम्हारा दिल भी नहीं लगा मुझसे बिछड़ कर कहीं। तुम्हारा दिल भी नहीं लगा मुझसे बिछड़ कर कहीं। या तो तुम झूठे हो या फिर मेरे जैसे हो।
1: वाह वाह क्या बात है।
5: या तो तुम झूठे हो या फिर मेरे जैसे हो। रात को तारों में मुझको ढूंढा करते थे। रात को तारों में मुझको ढूंढा करते थे। तारों से बातें करते हो, तुम भी मेरे जैसे हो।
1: वाह वाह क्या बात है।
5: तारों से बातें करते हो, तुम भी मेरे जैसे हो। नोच खाया तुमको भी हिजर की तलखियों ने। नोच खाया तुमको भी हिजर की तलखियों ने। अंधेरों में अब रहते हो, तुम भी मेरे जैसे हो।
1: वाह वाह क्या बात है।
5: अंधेरों में अब रहते हो, तुम भी मेरे जैसे हो। तुमको भी आगाज से थी ना मोहब्बत मुझसे, तुमको भी आगाज से थी ना मोहब्बत मुझसे, कहने से बस जाते हो तुम भी मेरे जैसे हो।
1: वाह वाह क्या बात है।
5: कहने से बस जाते हो तुम भी मेरे जैसे हो, काश किसी मोड़ पर तुम मिलो और ये कहो, काश किसी मोड़ पर तुम मिलो और ये कहो, तुम आज भी मुझ पे मरते हो तुम भी मेरे जैसे हो।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
5: तुम आज भी मुझ पे मरते हो तुम भी मेरे जैसे हो, मुद्दतों बाद मिले हो बताओ तो कैसे हो, मुद्दतों बाद मिले हो बताओ तो कैसे हो, बरसों पहले जैसे थे क्या तुम अब भी वैसे हो।
1: क्या बात,
5: बरसों पहले जैसे थे क्या अब भी वैसे हो।
1: वाह वाह क्या बात, क्या बात।
5: ये था,
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितना था खूबसूरत प्यारा था, बहुत अच्छा, बड़े प्यारे अंदाज में आपने इसको हम तक सब तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया महबूब इलाही साहब, आपने बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब महबूब इलाही साहब के लिए, प्यारी सी आवाज़ के मालिक, प्यारी सी शायरी करके इनका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई, लेकिन क्या है कि अब वक्त हमें बता रहा है कि कोई लाइव कॉल नहीं ले सकते हम, क्योंकि वक्त हो चुका है जनाब जोहर की अजान का। तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
0: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:44, यानी कि 1:44 और हमारे साथ जुड़े हुए थे जनाब जावेद मीर भाई, लेकिन जब अजान का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं बेहतर है पहले नमाज़ पढ़ लूं, तो वो नमाज़ पढ़ने गए, तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी में वफा की तो उनसे हम अगले संडे के प्रोग्राम में ज़रूर कुछ सुनेंगे। तो अब फ़िलहाल वक्त जो है वो बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद जनाब आप एक प्यारी सी कवाली सुनेंगे, सदाबहार पुरानी कवाली रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये सभी सुनने वालों के नाम होगी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुरानी कवाली, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
2: 24 hours a day. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
6: Sunrise Radio, Sunrise.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: सर फिर।
1: जी दोस्तों, अभी आपने ये कवाली आपको सुनाने जा रहे थे, लेकिन हमारी प्यारी बहना जो हैं गजाला जमील साहबा वो जुड़ गई हमारे साथ रोचल से, तो पहले उनकी कॉल ले लेते हैं और उसके बाद जब टाइम बचेगा तो ये कवाली आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन यू, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे प्यारी बहना गजाला जमील साहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं?
2: बस अल्लाह का करम। मैंने कहा देख लेते हैं अगर थोड़ा सा टाइम हमारे लिए है।
1: नहीं, मैंने गाना चलाया था, रोक दिया क्योंकि वो अजान आ गई थी ना, तो फिर जो जावेद मीर भाई थे वो चले गए, तो तो इस वजह से फिर जो है मैंने सोचा कि चलिए आप कोई आने वाला नहीं क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है, तो इसलिए मैंने फिर लंबी कवाली लगाना शुरू कर दी, तो जो कवाली लगाई तो आप आ गई, तो मैंने कवाली रोक दी।
2: मैंने यही सुना, मैंने कहा कवाली लग रही है, अगर कवाली जरूरी है तो फिर कवाली चले, तो नहीं तो मैं
1: नहीं। नहीं, गाने तो सुनते रहते हैं बहना, आप लोग जरूरी है ना।
2: बस अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा सबको मेरी तरफ से सलाम
1: जी।
2: अभी मीर साहब से पहले कौन आए थे?
1: मीर साहब चले गए, वो होल पे थे, लेकिन महबूब लाई साहब थे,
2: आपने
1: महबूब लाई साहब थे, चौधरी फरियाद साहब आए थे और नदीम मंसूर साहब आए थे जी।
2: मैं सुन रही थी उन्हें, महबूब लाई साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम, ये हमेशा मुझे वैसे बड़ी अच्छा भाई है कि मुझे हमेशा याद रखते
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।

0: अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे
1: आमीन
0: और मीर साहब को भी मेरा सलाम अल्लाह फरियाल को और नदीम मंसूर को और एक मिठा भाई भी है
1: अच्छा
0: वो तो बस अब उसका नाम नहीं लेना मैंने मैं मिठा भाई ठीक है
1: मिठा भाई अब हम सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था मैं मिठा भाई हूँ अब मैं तो हो नहीं सकता
0: नहीं नहीं आप मेरे बड़े भाई हो आपको तो मैं
1: अच्छा फिर मैं कड़वा भाई हूँ फिर बड़ा भाई हूँ कड़वा हूँ मिठा नहीं हूँ
0: अच्छा बात सुन
1: ये मिठा किधर से आ गया कौन है बताएं तो सही
0: अब मैं नहीं बताऊं
1: चलिए ठीक
0: पिछली दफा भी बताया था वो फिर सारों को बताना पड़ता है
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो वो फिर कुछ राज है अभी रहने तो उसे लकब दिया गया है
1: अच्छा मिठा भाई अब मैं गैस कर सकता हूँ
0: हाँ बस कर दिया बस बेटा
1: नहीं गैस कर दूँ मैं
0: मैं भी कह हाँ बता दे
1: मैं सोच रहा हूँ कि हाँ। जी जी हमारे नहीं है वो भाई रुखसार अहमद साहब
0: या या वो बादशाह
1: सलामत हाँ वो शायद वो मिठे हो गए हैं ना क्योंकि वो बटर बड़ा ही खर्च करते हैं वो जब आते हैं
0: बस उनकी अपनी फैक्ट्री है सारी
1: सही है जी फरमाइए बहना ये ना बातू बातू में टाइम निकल जाए
0: बस थोड़ा सा है तो लंबा है अंदर की सलाम अंदर साहब क्या है क्योंकि मैं चले जितना मुझे बता दीजिएगा कि टाइम खत्म होना है कितने मिनट है
1: अभी काफी है आप सुनाइए
0: अच्छा अच्छा मैंने कहा नहीं तो मैं रोक दूँ जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के दिल में
1: अच्छा अच्छा
0: तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में
1: वाह वाह क्या बात है
0: जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के दिल में तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में
1: वाह क्या बात है
0: वक्त की रवानी से है वक्त की गिरानी है सख्त बेजमीनी है सख्त लामकानी है
1: वाह वाह बहुत खूब
0: थैंक यू भाई हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है
1: वाह क्या बात
0: तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है तुमको जो सुनानी है बात वो जरा सी है बात उम्र भर की है उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे इन अनगिनत जजीरों में बेशुमार मोती हैं
1: वाह क्या बात
0: आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की थी बात उसके पुरानी है
1: वाह वाह क्या बात
0: बात को जरा वो जरा सी थी बात उम्र भर की थी उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं दर्द के समंदर हैं अनगिनत जजीरे हैं बेशुमार मोती हैं
1: वाह वाह वाह
0: आँख के दरीचे में ने जो सजाया था बात उसकी ए भाई जी जो है ना इंटरनेट बहुत तंग करते हैं
1: हाय हाय हाय
0: एक मिनट निकल जाते हैं ना फटाफट वो मैं लाइव ही पढ़ती हूँ तो बस उसमें हो जाता है क्या मेरा ख्याल क्या करे
1: कोई बात नहीं टेंशन मत लें
0: अच्छा अच्छा टाइम है फिर
1: हाँ टेंशन मत लें आप उसको ढूंढ लें
0: मैं देखती हूँ बस लाइव पढ़ो ना तो वो निकल ही जाता है बीच में
1: अगर मोबाइल सामने रख के उससे पढ़ेंगे तो फिर होता ही है ना
0: मोबाइल से ही पढ़ते हैं अब तो लिखने
1: बाज़ दफा ऐसा होता है कि कोई पढ़ रहा होता है मोबाइल से तो ऊपर से किसी की कॉल आ जाती है
0: नहीं अभी कॉल नहीं आई बस वो पर्दा नशीन हो गया
1: कोई बात नहीं कभी कभी उसको शायद दुखी हो गया ना दुखी था
0: वो दुखी हो गया कि जिन्हों में पड़ गई है
1: चलिए कोई बात नहीं अगले अगर अल्लाह ने चाह जिंदगी ने बख्शी तो इंशाल्लाह संडे के प्रोग्राम में, ठीक है ना?
0: पूरा भी पढ़ूंगी मैं, इसीलिए तो जल्दी जल्दी पढ़ रही थी कि टाइम भी नहीं है।
1: सही है,
0: जल्दी ने कहा कि बस
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसे नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़े ना कोई ऐसी गजल तो साथ में वो रख लिया करें, अंकरचीफ या टिशू वो पकड़वा दिया करें उनको, ताकि वो आंसू पूछते रहें, भागे नहीं या गायब ना हो जाए।
0: वो ना टिशू खत्म हो जाते हैं।
1: सही है, ठीक है बहना, अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखना। तो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी बहना गजाला जबीन सभा रोज दिल से, बड़ी प्यारी गजल सुन रहे थे उनसे, लेकिन वो जैसा कि आपने उनकी जबानी सुना कि वो बेचारे इमोशनल हो गए और गायब हो गई वो गजल। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी रही फिर तो। अब मुझे आमिर सिराज को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए आमिर सिराज को इजाज़त दीजिएगा, हमारी जन्म से खुदा हाफिज़, अल्लाह नेहबान एंड गुड बाय।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: Music. Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निका, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

सारे के सारे इस देश के वासी लोग हमारे, जवान बूढ़े बच्चे प्यारे, आ जाओ सारे हमारे। और इधर भी तो वो देखो देखो, उस हुजूम की गर्दिश, जनों की बारिश में ऐठा।

दर, हर दिल में, डगर में, नजर में, जिगर में, ऐसी लहर जैसे शहर, हर पहर इकट्ठा शहर। बेताज बादशाह मन शहनशाह, बेताज बादशाह मन शहनशाह, ना जेब में पैसा ना चाय में शक्कर। भाई हमने ना तो देखा ऐसा जैसा ये गरीब फकीर अकड़, ये महान प्रधान श्रीमान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर।

कहां टेढ़ा कहां झोल। समाज की सारी लंबी रस्सी, समाज की सारी लंबी रस्सी, खींचा तानी तानाशाही, देश के नेता नेताशाही, हाँ हाँ ही लापरवाही।

0: चढ़कर परे सबसे हटकर
1: जब आएगा मैदान में अपनी ही शान में उड़ता आसमान में बसने उस स्थान में जो ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर तो रब उसके साथ होगा रथ जनता के सवार होगा देगा ये लेगा ये बेधड़के बेफिकर टक्कर पे टक्कर ये महान प्रधान श्रीमान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर

यूजलेस। ओके।

0: don't have that part.
1: Have you tried down the road?
2: We can get it in, but it won't be for a few days.
3: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
4: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
4: चाचा केड़ा चाचा
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: दूसरी ओर बापू ने युद्ध का नया यंत्र दिया है। अंग्रेजों को धाराशाही करने की खातिर सत्य और अहिंसा का अद्भुत मंत्र दिया है।
1: दुश्मनों के जिस्म पर करना नहीं हमें प्रहार, अचूक निशाना साथ करेंगे सीधा उनके दिल पर वार। सत्याग्रह के आगे उनको नतमस्तक होना ही होगा, छोड़ के भारत जाएंगे वो होकर बेबस और लाचार।

0: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
1: जुतियां सस्ता सोना नहीं मिली। चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला है सिर्फ दो पौंडना कान सलाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।

0: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste and something new.
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: कौन है ये जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? हुए
3: खान, हम शरीफ क्या

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सरकार खुश आमदीद, वेलकम टू सनराइज रेडियो ऑन 100.6 एफएम, 103.2 एफएम अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर एंड नॉट फॉरगेटिंग एंड डीएबी प्लस ऑन वेस्ट यॉर्कशायर। आपका होस्ट दोस्त यहां भी हाजिर है, मेरा नाम परवेज, आई एम हियर टिल 11 का बीड़ी शाम। और आप सबके नाम रंगे महफल का प्रोग्राम है 01274309696 पे। एंड टुडे इज 23rd of 9th 2026। द वेदर हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल लवी डवी रोमांटिक मौसम है। कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, वॉट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर ब्यूटीफुल इवनिंग। एंड थैंक यू ऑल दोज लवली लवली लवली कॉल्स को मैंने, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमें याद कर रहे हैं। और लाने यहाँ पर चमक रही हैं, दमक रही हैं, और हमें ये देख के सुन के मुझे दिल गार्डन गार्डन दिल बाग बाग हो गया। और ये गीत मैं आप सब दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, हिट ऑफ द आवर। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून। एंजॉय
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: Right, that was the hit of the hour. आपने enjoy किया और हमें अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. And thank you very much all those lovely, lovely, lovely calls coming in. और life busy है और क्या कहेंगे, सब busy अपनी अपनी जगह पे. Life is busy, calls are busy. माशाल्लाह माशाल्लाह. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि time check करना है, which is very, very important.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 16 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मुन्ही break करेंगे. Break के foreign बाद I'm going to be mentioning all your name, hello, hi, kidan, whichever is going to be. And thank you very much for flashing in and thank you very much for lovely, lovely calls. और उनका को मैं नाम लूँगा थोड़ी देर के बाद. और यहाँ पे छोटी सी break, keep it locked.
2: Sunrise Radio.
3: जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता.
3: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9. टेलीफोन 01274-488-935.
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
0: Right, welcome back, listeners. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे जो साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और गिदन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. मिंटल किन से आपने याद किया, पापी जान वेलकम. सुमित्रा जी हैं, वेलकम आपको भी कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अतिका साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. वाजिद भाई हैं, आपने हमें याद किया. डॉक्टर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. वाजिद भाई फ्रॉम हॉडिसफील्ड, आपने भी हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, जो जिन्होंने हमें साथ दे रहे हैं. हमें अच्छा लगा, लाइनें काफ़ी बिजी हैं और जो जो विद हेल्प नंबर फ़ोन कर रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ उनका. और आपने भी हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे भी बात होगी और आपने कहीं पे जाना नहीं, ठीक है ना. और टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पर हमने क्या करना कि गीत पेश करना है गिदन भाई और हमारे पापी जान सुमित्रा जी, ये आपके लिए होगा. आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल ट्यून. और ऑल द कमर्शियल लिसनर्स, नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स, एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून. एन्जॉय.

राइट जनाब, वो वंडरफुल ट्यून और आपने इंजॉय किया और पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आने वाला गीत मैं पेश करूंगा खालिद पट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वेलकम जी अनु, खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह आपके लिए। और ये आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करना चाहूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इस गीत को इंजॉय करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बड़ा ही नायाब गीत है, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और आपकी पूरी टीम के लिए, आपके माशाल्लाह अच्छे दोस्त हैं, सबके लिए जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी होगा। वाजिद भाई फ्रॉम होटल स्कूल आपके लिए और आपकी टीम के लिए होगा। और थोड़ी देर के बाद मैं आपके दोस्तों का नाम ही लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें याद करे हैं। और नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया। और आपके लिए और आपके जो दोस्त बाब अजीज़ हैं और जो आपकी सखियाँ सहेलियाँ हैं उनके लिए गीतों का स्पेशली आपने सलाम पेश किया, चौधरी फरियाद साहब के लिए उनके लिए दुआ की है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और वो कह रहे हैं कि आप इंतज़ार में हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद किया। और वाजिद भाई आपने भी उनके लिए दुआएँ की हैं, हम आपके लिए भी दुआएँ करते हैं और ये गीत आपके लिए भी होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और देखो अभी मैंने नाम लिया है और अभी नाम लिया है नशीन जी आपका नाम लिया और चौधरी फरियाद साहब का नाम लिया और चौधरी फरियाद साहब आ गए हैं। देखो ये होती है खूबसूरती होती है, दिस इज व्हाट यू कॉल अ ब्यूटी क्या है ला? और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है, इंजॉय द ट्रैक।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274 733 732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
4: Sunrise and music.
5: Alright, moving on to the track which I'm going to be playing for Chaudhary Firyaz Sahab. Ye geet aapke liye hoga aur aapke pure doston ke liye hoga. Mujhe umeed hai, yakeen hai ki wo geet enjoy karenge. Bahut khoobsurat geet hai, nayab geet hai aap sab ke liye aur aapne sab doston ke salam pesh karne hain. Shakir Sahab hain aur hamare Meetha ji hain, unko salam pe aapne pesh kiya. Tikar Sahab hain, Gidan Bhai hain, Smitra ji hain aur baki jo dost ehbab hain aapke aur unhone aapko aur aapne unko salam pesh kiya hai. Aur Dr. Malik Sahab, bahut shukriya aapka bhi, aapke liye bhi geet hoga. Mujhe umeed hai yakeen ki aapki puri team ke liye hoga. और बहुत बहुत शुक्रिया नवादश के आपने हमें याद किया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है आपके साथ, बड़ी प्यारी गुफ्तगू और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें लुक आफ्टर किया यस्टरडे को और बहुत ही नयाब खूबसूरत वहाँ पे पार्टी हुई है मैनचेस्टर में और आने वाले दिनों में भी पार्टी होगी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा ही हमें इन्वाइट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दुआएँ करते हैं हमारे लिए और अच्छा लगता है कि जो खुद अच्छा इंसान होना तो सबको भी पसंद करता है, इन्जॉय करता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और ये मैं गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे क्योंकि ये जो गीत है ना बड़ा ही प्यारा गीत है, बड़ा ही नायाब गीत है और इस गीत को आपने इंजॉय करेंगे. और डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून.

Right, that was wonderful a tune और आपने enjoy किया definitely और हमें अच्छा लग रहा है कि ये गीत आपके लिए था और specially चौधरी फियाज साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए था उन्होंने enjoy किया और हमें अच्छा लग रहा है और यहाँ पे रौनक होगी है क्योंकि सब आ रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और ये सुन के देख के मुझे दिल बहुत ही खुश हो रहा है और दिल गार्डन गार्डन दिल बाग बाग हो गया क्योंकि आपकी वजह से है ये खूबसूरती है और यहाँ पे स्टूडियो में रौनक होगी है और बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ पे महक आ रही है खुशबू आ रही है और हमें अच्छा लग रहा है और बड़े दिनों के बाद बड़े हफ्तों के बाद मेरी प्यारी बहन ने हमें याद किया है और बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ी आपने दुआएं की हमारे लिए सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ देने आपने मेरा साथ दिया थैंक यू वेरी मच ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स है जो हमेशा ही मेरा साथ दें खुशी हो या गमी हो और आप मेरा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे बिफोर द The time I want to do a little bit announcement on Sunday Radio Listener Choice Award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues, artists you love. Voting will be exclusive to listeners, club members. So join free at sunrise.radio. Keep listening for more details. And that is all the beauty of Sunrise Radio. And there's so much happening and so much will be happening very, very, very soon as well. Keep it locked and keep it locked down with the Parviz Khan. Aur yahan pe thodi der ke baad yahan pe humne azan pesh karni hai. Woh bhi Isha ki azan hogi, mashallah, Yorkshire, Bradford mein. Apni apni maqami timetable ke dekh ke sun ke aapne namaz ada karenge. Mere liye, meri family ke liye dua karni hai. Especially jo bimar hain, के लिए खासतौर से दुआ करनी है थैंक यू और हमेशा मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कर रहा हूँ कि दुनिया जो है ना बहुत खूबसूरत बिलीव करें कि एवरीबॉडी इज़ यूनिक द ओन वे एज वेल और यही वो खूबसूरती है कि दुनिया इज़ खूबसूरत आन इज़ ज़िंदगी खूबसूरत है और वो भी बात हो रही है कि आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है आपकी सोच है और सोच को बदलें सोच को अच्छा समझें अच्छा खाएं अच्छा पिएं अलाल की ठीक है ना और क्यों मेरे मुर्शिद हमेशा ही कहते हैं कि अलाल के और वही बात हो रही है अलाल की बात हो रही है और यहाँ पर हमने अजान ब्रेक करनी है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए और सबके लिए और प्लीज़ अपना बड़े अदब अदाब से हम अजान पेश करने जा रहे हैं यहाँ पर और बड़े खलूस के साथ खीपे लॉक सुन रहे हैं

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

वाओ दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन्सन रॉबिन्सन आपने हमें याद किया है और रॉबिन्सन हमारे बहुत ही हमारे मित्र हैं और भाई हैं दोस्त हैं माशाल्लाह और हमेशा हमें याद करते हैं और सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम पेश किया है और बहुत अच्छा लगा और स्पेशली उन्होंने सलाम पेश किया हमारे गिदन भाई हैं हमारे पापी जन सुमित्रा जी हैं अतिका साहिबा हैं उनको उन्होंने सलाम पेश किया है और बड़ा ही अच्छा लगा इतना खूबसूरत पैगाम उन्होंने भेजा है और ये जो पैगाम है बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही नायाब पैगाम भेजा है रॉबिन्सन और रॉबिन्सन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत आपने न्यूयॉर्क से हमें याद कर रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है और ये मैंने देखा और इतनी खूबसूरती आप में इतनी मिठास है आप में और बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन्सन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का प्यार मोहब्बत बांटने का बहुत बहुत शुक्रिया यू आर सच अ लवली लवली पर्सन माशाल्लाह और आपसे बातों से पता लगता है कि यू आर माशाल्लाह यू इन न्यू यॉर्क बाय द वे और आप हमें हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सुनारी को सुन रहे हैं तो आपके जो दोस्त अहबाब अजीज़ हैं उनको आपने सलाम पेश किया पैगाम पेश किया कि आप हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जो भी आज का गीत होंगे वो आपके लिए मैं पेश करूँगा हमारे गिदन भाई भी आएंगे वो गाना आपके लिए पेश करेंगे हमारे सुमित्रा जी हैं वो भी हमारे आपके लिए गाना पेश करेंगे जो बाकी के जो दोस्त अहबाब अजीज़ हैं और अतिका साहिबा हैं वो भी आपके लिए गाना पेश करेंगे और शेर शायरी करेंगे आपके लिए तो ये अच्छा लग रहा है कि आपने हमें याद किया इतने दूर से याद किया न्यूयॉर्क से आपने हमें याद कर रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा लगा और आने वाला हर सुन जो गीत होगा मैं आपके लिए पेश करूंगा मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे और गिदन भाई आई सल्यूट यू सर आई सल्यूट यू योर फ्रेंड्स आर अमेजिंग योर दोस्त जो आपके दोस्त हैं देखो कि हर कोने में हैं हर खिते में हैं माशाल्लाह तो ये सुन के देखे तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने जो हमेशा ही मेरा साथ देते हैं और बाबी जान हैं सुमित्रा जी हैं और देखो ये सबको लेके आते हैं सबको जमा करते हैं ये इनकी खूबसूरती है बिलीव करें दिस जेंटलमैन माशाल्लाह ऑल बीन विद मी ऑन हिज फैमिली ऑन विद कभी खुशी कभी गम और उन्होंने मेरा साथ दिया बिलीव करें जैसे मेरे अपने होते हैं एंड यू नो माय शोल्डर टू शोल्डर एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटिफुल पीपल सो इज़ रॉबिन्सन सो इज़ एवरीबॉडी एल्स एज़ वेल एंड दिस इज़ द फैक्ट दैट आई विल बी प्लेइंग एंड रॉबिन्सन ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा आपके दोस्त अहबाब अजीज़ के लिए होगा और मुझे बहुत अच्छा लगा और

बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? ये मुझे शर्मिंदा ना किया करें, क्योंकि आप भाई हो, आप गिदन भाई के हम दोस्त हो, आप मेरे भी दोस्त हो, आप उनकी फैमिली हो, मेरी भी फैमिली हो, और जो उनके दोस्त हैं वो भी मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह। दिस इज़ अ ब्यूटी, और वेलकम अबाउट, वेलकम टू माई फैमिली, वेलकम टू सनराइज़ फैमिली, एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल। हमेशा मैं बात करता हूँ कि वी आर ऑल फैमिली माशाल्लाह, हम एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं और ख्याल रखते हैं। और ये जो गीत है मैं पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद और यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे और आप सब सुनने वालों के लिए होगा। इंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, इंजॉय।

0: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे वो जो मैजिक होने वाला है और 01274306 और यहाँ पे हमारा साथी अतीक साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: कैसे तबीयत आपकी? ठीक ठाक से? ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आपकी दुआएं हैं
0: माशाल्लाह।
1: और खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत मौसम में ये रंगे महफिल है
0: माशाल्लाह।
1: और रंगे महफिल में के सब सितारों को और चांद को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और इस रंगे महफिल में के जो सॉन्ग हैं, जो गीत लगाए हैं आपने
0: जी,
1: जो के काबिले तारीफ हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल को लुभाने वाले, बहुत ही हसीन गीत।
0: वाजिबा, क्या कहने क्या कहने। और हमारा साथ दे रहे हमारे न्यूयॉर्क से रॉबिन साहब, और उनको भी हम वेलकम कहते हैं, जी कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं,
1: उनको बहुत बहुत सलाम, उनको डबल डबल सलाम, क्योंकि वो बहुत ही नफीस अच्छे इंसान है
0: माशाल्लाह।
1: बहुत ही खूबसूरत, क्या उनकी तारीफ करें,
0: क्या कहें, क्या कहें,
1: वो बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही प्यार करने वाले, और प्यार में सबसे प्यार करते हैं और निभाते हैं और बताते हैं कि मैं इंसान का पता चलता है कि वो
0: कोई शक नहीं है। मैंने पहली दफ़े उनसे साथ बात हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा कि मैं उनको पहले ही जानता हूँ और हमारी अपनी फैमिली की तरह हैं, और बड़े ही अच्छे नफीस इंसान है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह।
1: उनसे रिक्वेस्ट है वो अपनी आवाज़ सुनाएं
0: जी,
1: और ज़रूर सुनाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी है।
0: वाह जी वाह वाह वाह वाह।
1: तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे और अपना कुछ ना कोई कलाम या कुछ जो भी उनके पास होगा वो ज़रूर हाजिर होंगे
0: जी।
1: तो उनको बहुत बहुत सलाम, और आज की सारी जो भी हमारे गीत हैं, हमारी शायरी है, सबके नाम और रबिन सिंह भाई के नाम
0: जी, कमाल हो गया वाह।
1: तो सबसे पहले तो हमारी सुमित्रा जी हैं और गिदर भाई हैं, रेखा जी हैं, उनको नमस्ते। और सुमित्रा जी और गिदर भाई के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते, वो कितने खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं आके, और वो भी महफिल को ऐसे लूटते हैं जो उनका हक हो।
0: कोई शक नहीं, कोई शक।
1: बहुत ही प्यारी महफिल सजाते हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, और वो आते रहें और इसी तरह महफिल सजती रहे। तो अपनी नशीन जी हैं, शाह परी हैं, जुलेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, सितारा जी को भी हम आवाज़ देते हैं, वो अगर सुन रही हैं तो ज़रूर आएं और अपनी खूबसूरत शायरी सुनाएं। आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, चौधरी फयाज साहब हैं, उम्मीद है कि वो भी ज़रूर आएंगे।
0: चौधरी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, आपके बाद वो आएंगे इंशाल्लाह, और उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने बड़े दूर से याद किया है और बड़ा अच्छा लगा जी।
1: बहुत खूबसूरत शायरी होती है उनकी, हमेशा की तरह आज भी वो खूबसूरत शायरी और सॉन्ग की रिक्वेस्ट है उनसे, वो सुनाएंगे तो आप बताइएगा उनके उनको कि वो सॉन्ग जरूर सुनाएं।
0: वाह जी वाह।
1: तो नदीम मंसूर साहब हैं, उनको तो सब पता ही है सब, वो कितनी खूबसूरत आवाज है उनकी,
0: बड़ी कमाल की,
1: बहुत खूबसूरत शायरी और बहुत खूबसूरत माये टप्पे गाते हैं वो। और पापा जी हैं, पापा जी पता नहीं कहाँ गायब हैं,
0: पापा जी को लाइन नहीं मिल रही है, और वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो बस वो लाइन नहीं मिल रही है उनको, इंशाल्लाह वो आज देखते हैं क्या होता है जी।
1: पापा जी को लाइन जरा, शकील भाई हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह खूबसूरत शायरी के साथ, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत हसीन शायरी होती है, उनकी शायरी का एक मतलब होता है,
0: कोई शक नहीं,
1: बहुत खूबसूरत शायरी होती है उनकी। अब्दुल कयूम साहब हैं, मुदस्सर ज्ञानी साहब हैं, और वाजिद भाई हैं, सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, और रफ़ी रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, उनका भी वेट है कि वो सॉन्ग सुनाएंगे आके।
0: आजकल वो बहुत खूबसूरत शायरी की है उन्होंने, पिछले प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम में जब वो आए थे माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत शायरी। और हमारे मीठा जी हैं आजकल, तो मैंने छा गए आर्टिकल, मीठा जी हमारे छा गए
1: जी, आपके मीठा जी तो वाकई मीठा जी हैं, वो इतनी खूबसूरत बातें और इतनी खूबसूरत शायरी भी वो करते हैं, जब बहुत खूबसूरत होती है उनकी
0: जी,
1: इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। तो राना नवीस साहब हैं, तारिक बट साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, ईशान भाई हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, राहुल हुसैन साहब हैं, राहुल हुसैन साहब को भी हम चाहते हैं कि वो आएं और अपनी खूबसूरत बातें सबको सुनाएं। तो सबको बहुत बहुत दोबारा सलाम करते हैं और ये शायरी कुछ शायरी है सबके नाम करेंगे और राबिन भाई के साथ के नाम भी ये शायरी सब सारी होगी
0: जी।
1: तो कहते हैं दीमक की तरह गम भी ये चुपके से पल गया,
0: वाह,
1: हंसता हुआ वजूद था अंदर से गल गया।
0: बहुत खूब।
1: दीमक की तरह गम भी ये चुपके से पल गया, हंसता हुआ वजूद था अंदर से गल गया। यादों का एक हजूम था सीने में उम्र भर, एक नाम क्या लिया कि मेरा दिल मचल गया।
0: बहुत खूब।
1: आंखों में एक ख्वाब बड़ी देर तक रहा, आंखों में एक ख्वाब बड़ी देर तक रहा, आखिर वो तेरी याद का आतिश में जल गया। जिस शाख पर उम्मीद का एक घोंसला बना, जिस शाख पर उम्मीद का एक घोंसला बना, इस शाख को खिजाओं का मौसम निगल गया। अपनों के दरमियां भी रहा अजनबी समय, अपनों के दरमियां भी रहा अजनबी समय, हर एक शख्स वक्त के सांचे में डल गया। बारिश में धुल गई सभी चेहरों की गर्द भी, बारिश में धुल गई सभी चेहरों की गर्द भी, एक शहर था फरेब का सारा बदल गया। लिखने के इस हुनर का अजब मौजजा हुआ, लिखने के इस हुनर का अजब मौजजा हुआ, जो दर्द मेरे दिल में था लफ्जों में डल गया। सागर ये जिंदगी में अजब हादसा हुआ, सागर ये जिंदगी में अजब हादसा हुआ, एक झूठ की तपश से मेरा घर पिघल गया।
0: वाह।
1: दीमक की तरह गम भी ये चुपके से पल गया, हंसता हुआ वजूद था अंदर से गल गया। रफाकत और अदावत के दरमिया में फंसा हूँ यारो, मैं अपने अहदे वफा की दास्तां में फंसा हूँ यारो। न तरके वफा का हौसला न लब कुशाई की मजाल, अजब हिसारे मरवत की जाम में फंसा हूँ यारो। वो आशना भी हैं लेकिन निगाहें यार में अब किसी गुमा की तरह बेनिशा में फंसा हूँ यारो। जुबां पर मोहर खामोशी निगाह में अशोब, दिल के ही एक राजदा में फंसा हूँ यारो। ये कैसा सितमे जमाना ये कैसी मसलत ज़िस्त, कि एक शख्स के दो इम्तहा में फंसा हूँ यारो।
0: बहुत खूब।
1: वो दोस्ती के नकाबों में अब खौफ रखते हैं, वो दोस्ती के नकाबों में अब खौफ रखते हैं, इनके लुत्फ पोशीदा के अमां में फंसा हूँ यारो। न सर झुका के बचा हूँ न सर उठा के गुजरा, न सर झुका के बचा हूँ न सर उठा के गुजरा, मैं अपनी गैरत दिल के मियाँ में फंसा हूँ यारो। ये लोग अमन भी देते हैं खौफ की मानिद, ये लोग अमन भी देते हैं खौफ की मानी, मैं किसके वादे का अमनो अमा में फंसा हूँ। शिकस्ते दिल का भी शिकवा नहीं मुझे, मैं अपने हैद की टूटी जबा में फंसा हूँ यारो। रफाकत और अदावत के दरमिया में फंसा हूँ यारो, मैं अपने अहदे वफा की दास्तां में फंसा हूँ यारो। कहते हैं कि कर गया, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें।
0: बहुत खूब।
1: अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें।
0: बहुत खूब।
1: गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो,
0: वाह,
1: गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा,
0: वाह,
1: तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा,
0: वाह,
1: दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हजाबों में मिलें।
0: बहुत खूब।
1: दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हजाबों में मिलें, आज हम दार पे खेंचे गए जिन बातों पर,
0: वाह,
1: क्या अजब कल वो जमानों को नसाबों में मिलें।
0: वाह।
1: अब ना वो मैं ना वो तू है वो माजी है, जैसे दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिले।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले।
0: वाह क्या कहने।
1: इस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।
0: बहुत खूब बहुत आला।
1: तो थोड़ा सा सॉन्ग है सबके नाम करेंगे।
0: जी जी।
1: तो ये वैसे तो वो आपके जो पाकिस्तान के हैं क्या अब्दुल कयूम साहब को बड़ा पसंद है
0: जी,
1: लेकिन वो तो भी
0: जी,
1: सुन नहीं सकेंगे
0: जी।
1: तो सबके नाम करते हैं
0: जी जी।
1: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ना जी को जलाना मुझे भूल जाना। मेरी याद में तुम, मेरी याद में तुम ना सुबहाना, ना जी को जलाना मुझे भूल जाना। मेरी याद में तुम।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: समझना।

0: भूल जाना मेरी याद में तुम। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और इतना खूबसूरत शायरी भी की है, गाना भी गुन गया और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से, और हमारे जो रॉबिन्सन हैं उन्होंने पिछले आवर मुझे फ़ोन किया और आपकी तारीफ कर रहे थे माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया और रब रखा ये आपके लिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं। और फरियाज साहब, क्या वजह है कि आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है? आप जब भी मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, वेलकम जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0-43 पर कॉल करें।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste and something new.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM. और मैं माजर चाह रहा हूँ, हमारे चौधरी फरियाज साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, पता नहीं क्या वजह है। हमारा सिस्टम तो ठीक ठाक है फिलहाल, तो सिस्टम A1 है, पता नहीं उनकी तरफ से मेरे ख्याल में कोई मसला हुआ है। और मैंने कोशिश की है कि उनको दोबारा कनेक्ट करूँ, तो उनकी यहाँ पर कोई डिस्कनेक्ट हो गया है दोबारा। और उनसे मैं माजर चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत ही दुख हुआ और मलाल हुआ है कि देखो मेरे भाई ने फ़ोन किया ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से, तो उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और ये क्या मसला हो रहा है। अल्लाह खैरी करे कि हम दुआ को हैं कि पाकिस्तान का मसला हल हो जाए। कि अभी आपको पता है कि हमारे उस शहर में, हमारे उस जगह पे आजकल का इंटरनेट का मसला है, वहाँ पे इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, और वो उन्होंने ऐसा वो क्या करेंगे, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा और देखते हैं क्या होता है। एनी वे, यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, गुरु जी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं?
1: मैं फर्स्ट क्लास हूँ, A1 फंटास्टिक, और आपकी आवाज़ सुन के और बेहतर हो गया हूँ। और आप सुनाए, कैसी तबीयत आपकी?
4: बस एकदम ठीक ठाक है।
1: वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। और आज तो धमाका हो गया, और रवि साहब ने बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज है, बड़ी उन्होंने तारीफ की आपकी। और क्या कहने,
4: रॉबिन साहब ने अभी अभी टेक्स्ट किया
1: जी,
4: उसने अतीका जी को बहुत बहुत सलाम भेजा और आपको भी भेजा।
1: वाह जी वाह,
4: उसने बोला कि आप तो जीनियस है अभी।
1: हाय हाय हाय, सदके जावा सदके जावा। देखो ये होती है खूबसूरती होती है देखो, और उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से आपको वेलकम किया उन्होंने, और सबको आप उनको जानते हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब सब एक दूसरे के साथ अच्छे तावन करते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल माशाल्लाह फीलिंग।
4: तो वो कलीना जी को भी बहुत याद किया उसने।
1: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
4: सलाम अतीका जी को भेजा है
1: जी जी।
4: तो अभी चौधरी फरियाद भाई की लाइन मेरे साथ ज्वाइंट हो गई,
1: उन्होंने की लाइन को कनेक्ट हो गया, मुझे बहुत ही दुख।
4: मेरे में जॉइंट हो गई ना।
1: हाँ देखो वे क्या करें, देखो वो उनकी लाइन ड्रॉप हुई है, आपको लाइन मिल गई है। देखो वो ये एक अप एंड डाउन होता रहता है, देखो अदरवाइज आपको थोड़ी देर के बाद लाइन मिलती। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो भी हमारा अपना, आप ही हमारे अपने हैं जी।
4: तो सबसे पहले हमारा शकील भाई
1: जी,
4: जरीफ मेर भाई, मोहम्मद हनीफ भाई, शाजी भाई, वाजिद भाई, हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद जी
1: जी,
4: सजाद पहलवान है, इकबाल भाई है
1: जी,
4: शहीद शाह है, पापा शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब है, हमारा मोहम्मद रफी जी है, रॉबिन्सन है हमारा न्यूयॉर्क से
1: जी,
4: कयूम साहब है, और हमारा नवाब परवेश खान है,
1: जी,
4: हमारी बहन समीना खान है, आशिया जी है, अतिका जी, सलीना जी, सीमा जी,
1: जी
4: एकिंगटन से सिमी जी,
1: रेखा
4: जी,
1: जी
4: हमीदा जी, सितारा जी, मिश्रा, मिसेस पटेल
1: जी,
4: और जो जो सुन रहे सबके लिए हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
4: तो परवेज भाई
1: जी, जी
4: ये छोटी सी जिंदगी है,
1: छोटी सी जिंदगी है,
4: हर बात में खुश रहो।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह।
4: जो चेहरा पास न हो उनकी आवाज में खुश रहो।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, लाजवाब लाजवाब, ब्यूटीफुल।
4: कोई रूठा हो आपसे
1: जी जी,
4: उसके अंदाज में खुश रहो।
1: हाय हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत, बहुत नया।
4: जो लौट के नहीं आने वाले
1: वाह,
4: उनकी याद में खुश रहो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, वाह।
4: क्या लेके आया था और क्या लेके जाएंगे,
1: बहुत खूब।
4: कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया, बड़ा ही खूबसूरत नया पैगाम, वाह।
4: अच्छा, तो ये गाना है जो हम पेश करेंगे
1: जी जी,
4: तो अपना रवि साहब के लिए,
1: क्या कहने
4: जी के लिए,
1: आज का पूरा प्रोग्राम उनको डेडिकेट करते हैं, पूरा प्रोग्राम, क्या कहेंगे, वाह जी वाह।
4: उम्मीद करता हूँ उसको पसंद आएगा।
1: जी जी, क्यों नहीं।
4: मुझको इस रात की

0: थैंक यू.
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कमाल कमाल. क्या गीत आपने गुनगुनाया मेरे भाई, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया जी. चाशा जी के वाह जी वाह, क्या कहने, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया जी वाह.
2: वो रोमिन साहब को पसंद आया
1: क्यों नहीं, वो तो मैं ना कि भंगड़ा पा रहे हैं, वो भंगड़ा डाल रहे हैं वहाँ पे. वो तो भंगड़ा डाल रहे हैं वहाँ पे. वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने. और उन्होंने बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी तारीफ करते हैं हमेशा ही, वो क्या कहने, वाह
2: बहुत अच्छा इंसान है.
3: मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो.
1: इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत खूबसूरत. और हमारी बाबी जान कौन सा गीत लेके आ रही हैं?
4: हेलो जी भैया.
1: हेलो बाबी जान, हाउ आर यू, आर यू गुड?
4: Fine, thank you,
1: भैया. हाय हाय हाय हाय, देखो आपकी तारीफ हो रही है आज, मैं क्या कहने. और हमेशा ही आपकी तारीफ करते हैं हम सब, करते हैं. और देखो और कहाँ कहाँ पे आपकी आवाज आ रही है, वाह.
4: मैं यही तो बोलती हूँ कि अच्छा इंसान सबकी तारीफ, खुद अच्छा इंसान सबको अच्छा
1: करते हैं. हम सब अच्छे हैं माशा, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं. खूबसूरती महफिल है, ये एक फैमिली प्रोग्राम है. देखो
4: कितना दूर से आपको कॉन्टेक्ट हुआ.
1: हाँ, न्यूयॉर्क से और अमेरिका से, माशाल्लाह न्यूयॉर्क से रबिन साहब हमारा साथ दे रहे हैं. और पिछले आवर में उन्होंने मुझे माशाल्लाह बहुत बिजी रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वाह.
4: इतनी मैं इसका काम का टाइम आपको फोन
1: किया. जी जी माशाल्लाह, वाह हमारा साथ दे रहे हैं. वो कहती है मैं पूरा प्रोग्राम सुनूंगा, वाह क्या कहने जी.
4: खुदा हमेशा इसको खुश रखे,
1: आमीन.
4: हमको ऐसा याद कर रहे तो थैंक यू सब
1: जी.
4: सबको सलाम बोल देती हूँ.
1: जी जी गो अहेड.
4: शकील भाई हमारा, बनली वाला है, जावेद भैया है, मोहम्मद हमीद भैया है, साजिद भैया है, चौधरी सैयद भैया. खुदा इसकी ठीक कर दे जल्दी जल्दी,
1: आमीन आमीन. और आज हमें दुख हो रहा है कि उनकी लाइन मिली है और उन्होंने पहले ही फोन किया है और वो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है. और हमें दुख हो रहा है कि या देखो कि उन्होंने बड़े दूर से फोन किया. जी
4: मिल जाएगी
1: जी इंशाल्लाह जी.
4: वो लाइन दूर से प्रॉब्लम होता है ना.
1: जी जी जी जी, इंटरनेट का मसला. जी जी,
4: सज्जाद पहलवान भैया है, इकबाल भैया है, फिर सज पप्पा शफीक भैया है, डॉक्टर मलिक साहब है, मोहम्मद रफी भैया है
1: जी,
4: हमारा रोविंद साहब भैया,
1: वाह
4: सबको मेरा बहुत बहुत सलाम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
4: दूसरा भी सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
4: सबकी पहली में मैं आशिया जी,
1: अतिका
4: जी, अतिका जी वो को भी बहुत याद किया, सपना को याद किया.
1: जी जी,
4: सलीना को, समी जी, रेखा जी, अमिता जी, तारा जी, जितने लोग आते हैं मेरा सलाम.
1: वालेकुम सलाम.
4: मैं आपको भी सलाम.
1: वालेकुम सलाम जी.
4: तो मैं भी गाना पुराना गा लेती हूँ एक.
1: जी जी गो अहेड.
4: हम तुझसे मोहब्बत करते सनम, हम तुझसे मोहब्बत करते सनम,

खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम। हे दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द बूटा पर आई नजर, तू आई नजर। खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, हम

आंसू जो बहा बरसात हुई, बरसात हुई बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम।

0: रहे हम तुझसे मोह कते करते सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे। थैंक यू भैया।
1: ब्यूटीफुल, कमाल कमाल कमाल। भाभी जान, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक आपने बहुत
0: आज मैंने गीतर की बुक्स चुरा लिया
1: बुक चुरा ली है और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही खूबसूरत। दोनों ने आपने बहुत खूबसूरत गाने लेके आ रहे हैं और बड़े ही अच्छे लगे। पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी बड़ा ही खूबसूरत गीत जो मैंने गाने सुने,
0: जितना लोग आते हैं सबके लिए गाना सब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कुछ और आपने कहना है या कोई शेरी शायरी करनी है, गाना गुनगुना है, यू वेलकम टू डू शो एज वेल।
0: वो दूसरा गाना
1: आपने गाना है तो गाना, कोई मसला नहीं, कोई ये प्रोग्राम आपके लिए कोई मसला ही नहीं है।
0: तो मैं एक गाना छोटा गा लेती हूं।
1: जी जी जी जी, गो अहेड।
0: मन रे तुम्हें बता क्या गाऊं, तुम्हें बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के टुकड़े या आशु।

अपने दिल की दुखड़ी या आंसू पी जाऊं मन रे

0: कब तक रंग चढ़ाऊं मन रे, तुम्हें बता क्या गाऊं। थैंक यू भैया।
1: ब्यूटीफुल, कमाल कर दिए, कमाल कर दिए, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, हमें अच्छा लगा। और आपने इतने खूबसूरत गीत गुनगुनाते हैं और ऐसा लगता है कि मैं सुनता ही रहूं। जी जी, क्या फरमाया आपने?
0: अतिका जी के लिए, आशा जी के लिए।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: Right time in the studio is 45 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the power of his hand. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद we wanna go on to the flashback and उसके बाद हमारा साथ दे रहे हैं और जो हमारे मोहतरम में भाई हैं, दोस्त हैं, सब आ रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और ये हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच। जो कोशिश कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, आपने हमारा साथ दे रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
4: अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
5: Sunrise and music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

right, welcome back here, listener. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM. और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे क्या कहेंगे, बादशाह साहब आ गए हैं, बादशाह जी आ गए हैं, और बादशाह जी को हम वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, ये हमारे बादशाह जी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।

0: मैं हमारे जो मोहतरम हमारे भाई हैं उनको हम जो ना डेडिकेट करने जा रहे हैं और वो सुन रहे हैं प्रोग्राम को और उनका एक फेवरेट ये मैया है और बड़ा ही खूबसूरत और किसी ज़माने में वो भी ऐसे ही मैं गुनगुनाते थे और आज उनके लिए हाशम खास ठीक है ना आप शुरू हो जाएं जी
1: ज़रूर ज़रूर

मैया निका हंस दाए, मैया निका निका हंस दाए, मैया निका निका हंस दाए, सोना

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत मैया सुना इनको का, और क्या कहने जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज है, क्या गीत और क्या मैया लेके आते हैं आजकल, और बड़ा ही अच्छा लगता है। और हम एक गाना सुनेंगे आपकी आवाज में, और आपने हमें बताया कि आपकी छुट्टियां हैं, हॉलीडे हैं, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और आपके चाहने वाले भी खुश हो गए हैं, उन्होंने कहा कि आज उनको जाने नहीं देने का, मैंने कहा कोई बात नहीं है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और अगले आवाज में हम गाना सुनेंगे आपकी आवाज़ में, और वो भी बॉलीवुड, क्योंकि हम जब सुनते हैं मैया सुनते हैं तो वो गाना रह जाता है, तो गाना सुनते हैं तो मैया रह जाता है, कह रहे थे करें क्या। और ये जो मसला है ना, इसको हमने दोनों को कंट्रोल करना है और साथ में चलना है कि चलेंगे, और बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि जो जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह हमेशा ही वो आपका इंतज़ार करते हैं और अफजाई करते हैं। तो फिर वो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार हम तो मैया तो सुनते हैं तो वो गाना रह जाता है, तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि आपने नेक्स्ट आवर में आपने गाना गुनगुनाएंगे कोई खूबसूरत गाना की आपकी आवाज़ में, और बड़ा ही नायाब गाने होते हैं, क्योंकि आजकल के जो आपने बड़ा ही खूबसूरत एक और सिलसिला आपने शुरू किया है, और वो बहुत ही मुश्किल सिलसिला है, तो वो किसी रोज़ यहाँ भी हम करेंगे और देखते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है, और वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने होल्ड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आवर में हम लेके जाएंगे, तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी तरफ से ये आपके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने यहाँ पे होल्ड करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें अच्छा लग रहा है आप सब हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हमारा साथ दे रहे हैं, और जितनी भी उनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और हम अगले आवर में उनको भी लेके आएंगे, क्योंकि वो भी हमारे बड़े ही अच्छे और हमारी रौनक हैं, हमारे योर्कशायर की ब्रैडफोर्ड की रौनक हैं, और इन जैसे इंसान माशाल्लाह बड़े ही कम लोग हैं यहाँ पर। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे जो सरमाया है माशाल्लाह, इनकी इज़्ज़त किया करें, इनकी हौसला अफजाई किया करें, ये जो ये दिलों के रिश्ते हैं, और ये रिश्ते मनाएं, और रिश्ते जो ना मनाने चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा तावन करें, खूबसूरत तावन करें। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे उस्ताद हैं और इनकी खिदमतदारी करें, इनके साथ बड़ा ही इत्तराम, बड़ा ही प्यार, खूबसूरती है। और ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं अहम खान जी हैं माशाल्लाह, और इनका हम शुक्रगुजार ममनून इनका कि ये हमारे योर्कशायर की के पूरे बरतानिया की माशाल्लाह हमारे रौनक है, और आन बान शान है। इनकी जो खूबसूरती यही है कि जो इनका बड़ा ही खूबसूरत इनका अंदाज होता है, और इनकी जो लिबास है माशाल्लाह, और एक अपनी खूबसूरती है, वो पाकिस्तान की खूबसूरती है। किसी रोज़ इनसे भी हम इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि इनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। एनी वे व्हाट आई एम गोना डू इज मीन टाइम बिकॉज आई गॉट कपल ऑफ मिनट्स एंड आई एम गोना बी फिलिंग द कपल ऑफ मिनट्स, और what I'm going to do is give you a bit of information about what's happening with the Sunrise Radio. ठीक है, और Sunrise Radio Listener Choice Award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues, artists you love. Voting will be exclusive to the Listeners Club members. So join free now at sunrise.radio. Keep listening for more डिटेल, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फो। और हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट आवर में एक और आपको हम खबर सुनाएंगे, क्योंकि हमारा आपको पता है कि सनराइज रेडियो इज गेटिंग बिगर ऑन द बेटर, और यहाँ पर हमने न्यूज़ ब्रेक करेंगे, देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 10. The boss of OpenAI says he believes the best version of artificial intelligence is one that gives people more agency in a complex world.
4: AI should give people more power over their own lives, more freedom to live lives the way they want, more ability to solve problems, big or small, and to improve their communities. We don't want to fall into the trap of blind optimism. We also don't want to fall into the trap of doomerism either.
3: Sam Altman's been addressing the UN Security Council following concerns AI technologies could soon improve themselves and slip beyond human control. The Prime Minister wants stricter regulation to stop the spread of rogue systems. Elsewhere, Iran's president says his people have been victims of terrorism during a speech at the UN General Assembly.
5: They martyred, assassinated our scientists, our men, women and children. Innocent children whom in truth had committed no crimes. Those who are terrorists describe us as such.
3: Masoud Pezeshkian told delegates Iran's military power is defensive and they want to develop nuclear energy, not a bomb. A member of the US team was seen walking out at the start of his address in New York. Three people have been charged with assaulting an emergency worker after a group of protesters gathered in Hampshire. It was ahead of the expected arrival of a boat carrying migrants in Gosport yesterday that headed along the coast to Dover instead. Harvey Weinstein's been sentenced to 15 years in prison for the sexual assault of a production assistant in 2006. The former Hollywood mogul's already serving 16 years behind bars for a separate rape. Two RAF pilots have suffered minor injuries after ejecting from their training aircraft on Anglesey. Footage shows plumes of smoke and fire erupting as the plane hits the ground. And there's some more good news for Oasis fans. The band's announced extra shows for their upcoming tour, including two more gigs at Nebworth. That's the latest. I'm Faye De Silva.
0: Sunrise Radio Network News.
6: A Wakefield man is due to appear in court charged in connection with an A61 collision which resulted in the deaths of six people. 50-year-old Christopher Cockell from Woolley Grange faces six counts of causing death by dangerous driving. The collision happened on Barnsley Road between Staincross and New Millerdam in July 2024. The six people who died included two children, aged 9 and 4. Cockle has been summoned following an investigation by West Yorkshire Police's Major Collision Inquiry Team and is due before magistrates in Leeds on the 28th of October. 38 young musicians from across the Bradford district have returned from a successful concert tour of Germany. Members of Bradford Youth Orchestra, aged between 11 and 19, spent 6 days in the Harz Mountains performing three concerts for local people and tourists. The trip was designed to develop their musical and performance skills while building confidence and experiencing another culture. The orchestra rehearses at Titus Salt School in Shipley during term time. Its next performance will be at the Bradford Music and Arts Service Christmas Festival at Bradford Cathedral in December. A Calderdale construction company has been fined £300,000 after a young worker suffered serious spinal injuries in a fall. 24-year-old Joseph Tuck was working on a housing development when he fell one story through an unprotected stairwell opening onto concrete. The health and safety executive found Hillbeck Homes of Sowerby Bridge had failed to put adequate measures in place to prevent falls from height. An HSE inspector described the incident as wholly avoidable. The company was fined at Leeds Magistrates Court and ordered to pay more than £9,000 in costs. This is Sunrise Radio News with Alex Shawson. Tributes have been paid to former Buckinghamshire High Sheriff and long-serving Milton Keynes charity trustee Peter Cara following his death. Mr. Cara had an association of more than 30 years with Milton Keynes Community Foundation, serving in roles including trustee, chair, and vice president. He was Buckinghamshire's High Sheriff from 2017 to 2018 and also spent more than 20 years working as a mental health manager with the NHS. The Community Foundation described him as a man of remarkable generosity, wisdom, and integrity. Buckinghamshire councillors have also observed a minute's silence in his memory. The makers of Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia's The Vaan have acquired music rights following a copyright claim. Musician Sargam Vaish alleged his recording of Aigiri Nandini was used in the trailer without permission. The two sides have now reached an agreement. That was Sunrise Radio News.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM across the West Yorkshire. Oh, that was the hitter of the hour. Aapne enjoy kiya hoga definitely, aur yahan pe humne karna hai time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, lady and gentlemen, boys and girls, according to Sunday clock, it's 9 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Parviz Khan. Aur yahan bhi mera saath de rahe hamare ustad mohtaram hain, hamare bhai hain, hamare dost hain, aur jitni ki main tareef karun kam hai, aur bahut acha lagta hai jab bhi wo shirkat karte hain program mein, aur bada hi khoobsurat unka andaaz hai, bada hi pyara andaaz hai mashallah, aur ye hamare ustad hain mashallah, Bradford ke jani mani hasti mashallah. M Khan ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum wa barakatuh. Jo aapne duaiye kalpat ke la aapke aapne khan puri listra jo sansaz ki team hai khawateen aur sahab azra sab ke liye allah ki rooh sukoon ki niyam se mala mal par
0: amin amin sum amin hak amin.
2: Kal Bradford Assembly mein gaya
0: ji ji,
2: to वहाँ से जब वापस आया तो बड़ी मुझे बड़ी परेशानी हुई. अल्लाह मेरी क्लास का टाइम है तो मैं क्लास के पहले कैसे पहुँच सकता हूँ, बस तो बड़ी देर लगाएगी.
0: ओह जी,
2: अल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी के जो कानून है उनका कोई अजीब व गरीब इंसान का वैभव गुमान नहीं होता
0: जी.
2: मैं इसी शहर में कश मकाश मकाश में था तो एक टैक्सी वाला आया मेरे सामने खड़ा हुआ
0: जी जी.
2: मुझे पूछने लगा तुम टोन में जाओगे
0: माशाल्लाह, क्या कहने देखो वाह.
2: तो मैंने कहा कि चौकल वाले लोग मोहम्मद पल दे बिन मशक्कत.
0: हाय हाय हाय, क्या कहने देखो, उसका शुक्रिया अदा करता जो भी टैक्सी भाई था जी जी.
2: अल्लाह उनको टैक्सी वालों के दिल मोम करके उनको उस तरफ मुतवजो का देता है.
0: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, बहुत खूब वाह.
2: बड़ा खुदा बंदे को दूध की रकमत पर बड़ा
0: जी,
2: किस तरह आदमियों को अपनी रकमत.
0: हाय हाय हाय, दुनिया में देखो ना उस्ताद जी, दुनिया में अच्छे लोग भी है ना, दुनिया में देखो ना खूबसूरती है.
2: टैक्सी वाले
0: जी
2: किसी को बस से वैसे ही लिफ्ट नहीं देते.
0: नहीं नहीं, अच्छे लोग, अच्छे दुनिया में सब अच्छे हैं माशाल्लाह, सब खूबसूरत हैं.
2: रसूल की मखलूक में
0: जी जी,
2: में खवातीन और हजरात ऐसे भी कुछ हैं जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी भी जान दे देते.
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने उनकी, वाह क्या कहने. ऐसे ही बेशक बेशक बेशक,
2: अल्लामा इकबाल का कलाम पेश करना चाहता हूँ
0: जी जी. इरशाद,
2: अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं
0: जी जी,
2: कोई कहाँ से सीखे ना कहीं लज्जत किरदार ना इफ़कार अमीक, हल्का शोक में

0: कानी मैनू नजरी मजे ज्या ज्या एक कानी मैनू सारी नजर ना आवे दिक तबा ते दिल दिक तबा दिल तंग रहेगा ज्ञान आराम ना पावे जो कुछ इस जने पर गुजरी रात रंज मुसीबत जमन मरण उदे तक सारी दसो फोन हकीकत
1: माशाल्लाह
0: तो सुनने वालों का दिल की गहराई से शुक्र गुजार हूँ
1: मुझे
0: तम इलम को आपके खवातीन और हजरात आप जैसे एक लोग
1: नहीं सर जी ये प्रोग्राम ही आपके लिए है माशाल्लाह और आप शिरकत करते हैं अच्छा लगता है माशाल्लाह आप अपने और बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत शुक्रिया रब रखा और ये थे हमारे मौजूद मेहमान और हमारे उस्ताद मोहतरम अहम खान जी और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ भी हमने छुटकी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फ़ौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो हमारा साथ दे रहे हैं जज़ाकअल्लाह खैर आप सबका दोस्तों का जो भी मेरे बहन भाई हैं साथी हैं दोस्त बाबे अजीज़ हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ और मैं इससे हमेशा ही बात करता हूँ और आज भी बात करूँ कि दुनिया में सब खूबसूरत हैं बिलीव करें कि everybody is unique और जो यहाँ पे आपको पता है कि you always have you know a good and the bad and ऐसा होता है वो आप एक ही सोच के किया करें कि हमेशा ही अच्छा सोचें अच्छा समझें अच्छा खाएं अच्छा पिएं और ये एक खूबसूरती है एंड बिलीव योर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत खूबसूरती है एंड यू विल ऑलवेज विन विद पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो है ना वो जीरो है नेगेटिविटी को रहने दो ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव ऑन ऑलवेज एंड गो विद द पॉजिटिव एज वेल डजंट मैटर व्हाटएवर हैपन रेन और शाइन ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिविटी कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है हम यॉर्कशायर मैनचेस्टर ईस्ट लैंकाशायर मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें
3: समथिंग न्यू इज कुकिंग एट जिना रेस्टोरेंट कम एंड डिस्कवर आवर एक्साइटिंग न्यू मेन्यू पैक्ड विद इवन मोर फ्लेवर्स एंड डिशेस टू एंजॉय ट्राई आवर सिग्नेचर फेवरेट्स इंक्लूडिंग कश्मीरी दम पुखट देसी फ्राइड फिश देसी स्टाइल चूजा एंड नमकीन गोश्त प्लस डिस्कवर आवर न्यू लंच मेन्यू विद डिलीशियस डिशेस एट ग्रेट प्राइसेस ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एक्सपीरियंस द न्यू मेन्यू टुडे जिना रेस्टोरेंट 109 लीड्स रोड ब्रैडफर्ड टू बुक कॉल 01274733732 Jinnah Restaurant Tradition, Taste and Something New
1: Sunrise and Music वेलकम बैक लिसनिंग योर लिसनिंग सुनर रेडियो 103.2 एफएम और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाद साहब आ गए हैं क्योंकि उनकी लाइन पिछले आवर में ड्रॉप हुई है तो मुझे बहुत ही मलाल हुआ दुख हुआ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू चौधरी फरियाद साहब बिस्मिल्लाह करा मैं दो हाथ जोड़ के माफ चाह रहा कि ये मेरे इसने मेरे कोई कसूर नहीं है तो फिर भी मैं तुझसे माफी मांगना ठीक है पैसे भी देने बिल भी पे करने कट्टी सारे कई बार क्या हाल है चलो कोई मसला
4: गवर्नमेंट डॉक्टर चौधरी मालिक साहब
1: क्या हाल है उन्हें बड़ा प्यार करने बिलीव करो कि बड़ा प्यार करने बड़ा खूबसूरती इसकी वजह आया कि मैं थोड़ी देर के बाद फोन कर सो ना तो लाइन है ना मिकी बड़ा डर होना है तुम्हें लाइन में ना कि पहले तुम लेके जाओ तो जहर है तू उधर फिर पता नहीं कि तुम मसला हो जाना ना तो ये मसले अल्लाह खैर करे कि थोड़े जी जल्दी हो जाने मसले हल हो जाने चलो गल करने लगता बाबा तुम कुछ शेयर शेयर करो बिस्मिल्लाह करो जी
4: बाबा परवेज
1: जी जी
4: वैसे तो मैं उधर शुरू करता पहले मैं और शेयर पढ़ता वैसे एक वैसे तुसें सुनाने या टोटा बिस्मिल्लाह करा
1: पहले
4: तुसें पूरी महफिल गया
1: जी जी
4: और ये शायद शायरी जरिया है तुसें पूरी महफिल वैसे है
1: जी
4: आज नहीं सारी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने नौशीन
1: जी अल्लाह खैर करे जी जी इंतजार कर रहे चौधरी फरियाद साहब ऐसे तुखा की दुआ करी बकरे न्याजा
4: सुनो ना
1: जी जी
4: जितने समझी जासन ये भी परसा था फिर आखिर पर और भी परसा ये सुनो पहले
1: जी
4: तुसा समझी जासो के मेरा भी तुसा नाल कितना प्यार है
1: हाय हाय हाय हाय
4: के
1: सदके
4: ये चांद की चांदनी में चांद गवारा नहीं हुआ
1: वाह वाह वाह वाह वाह वा।
4: चांद की चांदनी में चांद गवारा
1: नहीं हुआ वाह
4: हम हजारों के हुए कोई अमारा ना
1: नहीं हुआ वाह वाह वाह वाह
4: रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं सुनो रात गहरी
1: थी हम सोए नहीं
4: सोए नहीं दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं
1: हाय हाय हाय
4: कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे जाग रहे हो किस लिए
1: हाय हाय
4: किस लिए सोए नहीं
1: हाय
4: साडे गुरु के पूछा ना जैसी आंखा आती ओना मेहमाना वैसे जागने आ जेड़े भाई परवेज दे पुराण
1: विच हाय ए फफे ए कुछ की ए ए गल की दी ने सोनी गल की दी
4: जी
1: मैं ना पापे मनी गया क्योंकि दुनिया मन्नी है डॉक्टर मलिक साहब बड़ी तारीफ करने हमेशा ही तारीफा करने ने तो पिछले प्रोग्राम में उन्हें बड़ी तारीफ की है माशाल्लाह आठ तू नौ तो उन्हें बड़ी हौसला अफजाई की है तो बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं तो बड़ा ही चंगा लगा बड़ा ही खूबसूरत बंदे वाकई प्यार करने नशील साहब हो गए बाकी सारे जन बंद प्यार करने तो यह भी बड़ी गल वाकई प्यार करने जल्दी गल करने ना उस समझो कि पत्थर की लकीर हो जानी है तुम देखो बंद कितने बंद आखे बिल पे करने वापस आ जाओ यूके वापस आई जाओ पाकिस्तान इधर आई जाओ तो देखो कि बंदा तुम हजार पाउंड खर्च करना है तो क्यों खर्च करना प्यार मोहब्बत की वजह करना है ना क्या हाल
4: है ओ परस गल मेरी गल हुई है कार
1: अच्छा
4: निगाह चुकी है मेरी बच्ची कहंदी है अब्बा तुम्हारे तो बाद एक बड़े बड़े कोई बंदे सन ना भाई बड़ी अस्सी ने मालिक सन
1: अच्छा
4: वो आखनी है वो तुम्हारी तारीफ करने सन
1: नहीं बड़ी गल देखो देखो जी
4: डॉक्टर चौधरी मालिक साहब वैसे कुछ बंदे ना खलूस सानू याद है
1: जी जी
4: डॉक्टर साहब उन्होंने पूरी टीम है नशीन जी ने उन्होंने पूरी टीम है
1: अशिका
4: बाजी ने
1: जी
4: सिमी जी ने उन्होंने अम्मा जी ने सोनिया जी जितने भी है ना तुसी और चौधरी मुजफ्फर साहब ने चौधरी मजीद साहब और जितने भी मतलब मेरे दोस्त नवीद राणा साहब ने वाजिद भाई ने यकीन करो मैं यूं भाई ने एक एक बंदे का मैं किस तरह सारे का नाम
1: माफी चाहना
4: पर मेरे वास्ते सारे तुसी बहुत काबिल इहतराम हो और मैं थोड़े वास्ते
1: इंतजार रात नींद गुजार के छोड़ के नींद छोड़ के वापस दसने हो तो यह प्यार मोहब्बत और बड़ी गल देखो ना नींद छोड़ के छने
4: ना
1: करो करो करो करो
4: हम
1: सोए नहीं
4: बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं
1: हाय हाय
4: कोई नहीं हमारा जो हमसे हम पूछे हमसे जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं तो आसा आखा कि असि और जड़ी मैं गल आखी पापर वेज के प्रोग्राम की जिन्हें मैं मान उन्होंने वास्ते
1: हाय हाय पापे ए ना हो के ए गल ना हो पापे तुसां दे सब जी दे दिन रात तुसां दे पापे तुसां दे बिलीव करो कि तुहानू प्यार करने मोहब्बत
4: करने जिन्ने भी तुहाडे प्रोग्राम विच बंदे आंदे ने
1: जी
4: मेरे नाल सारे चंगे ने यकीन करो मेरे नाल सारे चंगे ने
1: जी
4: पर जनू साडे वास्ते बहुत बड़ा मेरे वास्ते इज्जत है तुसी सारे मेरे नाल इतना प्यार करदे हो यकीन करो ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ
1: ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਨ ਐਰ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨ ਐਰ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆਉਣ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਖਣ ਕਿ ਟਿਕਟ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ
4: अम्मा जी ने गजाला बाजी कुलसुम जी सीमा जी शाहपरी जी जुलेखा जी सारा जी पापी साहब गिद्दड़ भाई फरसाना जी सहमा जी
1: जी
4: और सोनिया जी सब मेरा बहुत बहुत सलाम और जनाब मोहतरम आमर भाई ने
1: जी
4: महबूब साहब ने और मुदसर साहब अजीत सलीम साहब चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले शकीर साहब ने हीरा भाई ने वाजिद भाई ने अयूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई ने अब्दुल कयूम भाई ने नवीद राणा साहब ने जनाब तारिक अकबर सर में और चौधरी मुजफ्फर साहब ने चौधरी असफ रियासत साहब ने डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने और चौधरी रुखसार साहब ने अहमद खान साहब ने नदीम मंसूर साहब ने राजा वकास साहब ने राजा जुल्कर ने चौधरी मनीर मेरा प्रात जफर अली गो साहब मामू साहब शोएब साहब और मनीर सिंह अली खसरे और नीफ भाई जी बल्कि सब दोस्तों मेरा बहुत बहुत सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम
4: अली अपने एक शेर जनाब
1: जी जी
4: बड़ा खूबसूरत बिस्मिल्लाह करा के मैनू रब मदीने पहुंचाए जेकर
1: सुभान अल्लाह क्या कहने
4: मैनू रब मदीने पहुंचाए जेकर चारू पलकां ने पलकां नाल देवां मैं जाई किते ਜੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਲ ਸਭ ਅੰਦਰੇ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜੁਕਾਈ ਕੇ ਦੇ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
4: ਦੇਵਾਂ ਬੋਸੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਬਿਗੜੀ ਬਾਦਲ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਵੇ ਦੀਦ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਾਈ ਕੇ ਤੇ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
4: ਤੇ ਮਜਾਜ ਨੇ ਰੰਗ
1: ਜੀ ਜੀ
4: ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋੜ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ
1: ਵਾਹ
4: ਜਦ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪਰਾਏ ਨਿਕਲੇ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ
4: ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਆਉਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਏ ਨਿਕਲੇ
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
4: ਜਿਤਨੇ ਕੀਤੇ ਤਬੀਬਾਂ ਇਲਾਜ ਇਤਨੇ ਜ਼ਖਮ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਏ ਨਿਕਲੇ
1: ਵਾਹ
4: ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਮਨੀਰ ਐਸੀ ਲੂਹ ਲੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨਿਕਲੇ
1: ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
4: ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਗਿਆ
1: ਵਾਹ
4: ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਭੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਦੌਲਤ ਸਬਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉਸੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਲਾਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੁੱਖ ਕਰਾਰ ਸਭ ਚੈਨ ਉਧਰ ਗਿਆ
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
4: ਅੱਛਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਝਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਨੈਣਾ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੰਗਰ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
4: ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿਫਲ ਤਸੱਲੀ ਪਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਮਨੀਰ ਸਭ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿਣੀ
4: ਆਖਿਆ ਦਮ ਦਮ ਯਾਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸਮ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਰਾਨ ਲੱਭ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਮ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਖਿਆ
4: ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹਰ ਲਮੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਗਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੀ ਇਹ ਅੱਖ ਮੰਗੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਿਆ
4: ਪਰਵੇਜ ਭਾਈ
1: ਜੀ ਜੀ
4: ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
4: ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ
1: ਜੀ
4: ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਵੇ
1: ਇਹ ਪੰਜੀ ਵਰਤਨ ਪੰਜੀ ਵਰਤਨ
4: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜੀ ਵਰਤਨ ਜੇ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਇਹ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬਰਤਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
4: ਭਾਜੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਖਲੂਸ ਵਰਤੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਦੁਬਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ
1: ਸਕਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
4: ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣੋ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਜੀ
4: आने ने कि और कुछ नहीं तुझसे तलब करता
1: वाह
4: और कुछ नहीं तुझसे तलब करता फकत एक वफा में मांगता हूँ
1: वाह
4: यूं चिरकना मुझे गरीब कहकर उल्फत भरी निगाह में मांगता हूँ
1: वाह वाह चौधरी साहब
4: अपने दिल में रख ले कैद करके अपने दिल में रख ले कैद करके उम्र भर की सजा मैं मांगता हूँ, मेरे जीने से जिए तू अली हमजा, मेरे जीने से जिए तू अली हमजा, बस यही दवा मैं मांगता हूँ।
1: चौधरी साहब मनी गया, चौधरी साहब इसलिए प्यार करने
4: पंजाबी के आने ने इसे नाल मिलना जुलना पंजाबी
1: जी
4: के मौला रखी बाद प्यार साडा।
1: वाह
4: हाय हाय
1: क्या कहने,
4: बड़ा खूबसूरत शेर। मैं आखिरी आखिर बताए इसे रख गया
1: जी।
4: मौला रखी बाद प्यार साडा, खुशी खुशी गुजरे गाम गाम जिंदगी।
1: वाह माशाल्लाह क्या कहने,
4: आवे दुख ना ना आवे दुख ना कोई करीब साडे, रे असदी वस्ती हर शाम जिंदगी।
1: वाह चौधरी साहब,
4: कर सके ना कोई जुदा सानू, कर सके ना कोई जुदा सानू, नोच करे प्रेम दे जाम जिंदगी, पवा वख ना कदी अली हमजा,
1: हाय हाय
4: पवा वख ना कदी अली हमजा, एक जान बन गुजरे ए तमाम जिंदगी।
1: हाय हाय हाय हाय हाय चौधरी साहब मनी गया। चौधरी साहब काश जे मेरे पर होना चौधरी साहब तो स्पेशल लाइन होनी चाहिए, तो खाली पाकिस्तान कॉलेज दे, खाली पाकिस्तान कॉलेज दे, तो ये इतने लाइन होनी चाहिए नहीं थी। चलो अल्लाह खैर करे ये भी आने वाले दिनों में शायद कोई बेहतर हो जाए, और कुछ आपके लिए और आपके जो जो वहाँ पे से पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं उनके लिए माशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे मेरे भाई, कि हम तो कोशिश करते हैं मेरे भाई, तो वहाँ पर मसला हो जाए इंटरनेट का और आपके फ़ोन लाइन का मसला हो जाए वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं आपके लिए, वहाँ पर क्या करेंगे, ये बड़ा मसला है चौधरी साहब। अंदर बड़ी खूबसूरती है, बिलीव करें तुखाए तो बाकी माशाल्लाह बड़े अच्छे माशाल्लाह खूबसूरत है, क्योंकि साड़ी कोई गलती नहीं होनी है। देखो कि लाइन ड्रॉप हो जाए किसी की और जो सिस्टम खराब हो जाए, पहले आके उन्हें कि सिस्टम खराब हो गया, जब सिस्टम खराब ना होना तो तुखानी तरफ लाइन ड्रॉप हुआ या कोई और मसला हो जाए तो भी अपोलोजाइज असं अपोलोजाइज कर सकते, तुखानी तरफ हुआ असानी तरफ हुआ तो एक और गल है, तो ये तुखानी तरफ हुआ तो क्या कर सकते पापे, उन्हें कि उन्हें गौरमेंट की आखो कि पर्दा करो, उन्हें आखो कि यार जाना होना है सुनने रेडियो पर तो लाइव कॉल में जाना होना तो कोई मसला हल करो, ठीक है ना, तो असं भी पर्ची डालने हैं, ठीक है बड़ी मेहरबानी सर,
4: सारी मैं फिर शुक्रिया अदा करता
1: हूं, थैंक यू थैंक यू, बड़ी मेहरबानी
4: मैं फर्जन फर्जन सलाम
1: देता हूं और स्पेशली
4: अपने खलूस मोहब्बत प्यार ना बेहद शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़े मेहरबानी है साडे मोहतरम में साडे अजीज सलीम साहब ने दो हाथ जोड़ के उनके सलाम करने हैं, तो बड़ी मेहरबानी आपकी भी उनकी भी, ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखे, तो इतवार रोज़ असें कोशिश करें कि जल्दी जल्दी करें तो जल्दी जल्दी कोई लाने ठीक करो, उन्हें अल्लाह उन्हें दुआ करें, उन्हें भी आखो तो असं भी आखने तो कोई मतलब मसला कोई हल हो जाए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया,
4: बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपकी नेक
1: दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लो भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
4: ठीक है जनाब,
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।

0: ਗਈਆਂ ਕੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
1: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ
0: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਉਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ
0: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274488935
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
3: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। और मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आई है और बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे मेरा साथ है नदीम मंसूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि
3: व बरकात। बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और आप शुरू हो जाओ, ये ना हो कि देर हो जाए।
4: देर हो जाए, चलें ठीक है, मैं शुरू करता हूँ
3: जी।

सांस की महक दामन को छू रहा है, कोई हाथ क्या

0: करें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: वाह वाह वाह, कमाल कर दिया मेरे भाई, कमाल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत आपने गीत गुनगुनाया, और पिछले आवर में जो आपने जो मैया गुनगुनाया था बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही कमाल का, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। एंजॉय योर हॉलीडेज, एंजॉय योर इवनिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और सईद एहसान है हमारे ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: वालेकुम सलाम एंड सलाम टू
2: जी जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूइंग?
3: Pretty fine, just come back from Turkey.
2: I know you come back from Turkey, mashallah, aur bada acha laga ki aap Turkey mein aapne enjoy kiya, and I do apologize ke pichle hafte aap try karte the, there was something wrong with your internet or something like that, or with your phone or something, and I do apologize for that one as well.
3: No, it's not, it wasn't your fault, it was my network.
2: Oh, was it your network? Oh, theek hai, main samjha ki yahan pe koi gadbad thi.
3: Nahi, aap bilkul theek the, wo maine unko, I told them off.
2: अच्छा, टोल्ड हिम ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, टोल्ड हिम ऑफ, ऑलराइट, बिकॉज़ आई वाज वरीड, मैंने सोचा कि आप कोशिश करने के फोन करने की, एंड यू कांट गेट थ्रू टू मी, सो यू कीप सेइंग टू मी देयर नो इंटरनेट, सो चलो ये अच्छा हो गया। एंड डिड यू एंजॉय योर हॉलीडेज? आप तो बहाना ढूंढे रहते हैं कि पार्टी हो, कहाँ पे जाना, कहाँ पे जाना है, और दस
3: जी I prayed behind the imam, I prayed on his janamaz, you know,
2: mashallah, no, you told me, yeah, mashallah, wo Turkey mein, mashallah, that was amazing, you know what, you are blessed, definitely you are blessed, that was amazing, or I love to go down there, I've not been yet, but inshallah I'm gonna go down there, so, because after seeing your pictures and everything, and you enjoyed it, mashallah, that was a beautiful and it's such a beautiful, and you enjoyed the holiday as well, so that was even better. सोने पे सुहागा हो गया ना? I've seen on the cake. That's for you.
3: And I've seen on the cake, of course.
2: That's for amazing. और आज हमारे लिए क्या लेके आई?
3: मैं एक नया गाना मैंने थोड़ा सा सीखा है, और I'd like to share with your lovely audience.
2: जी, go ahead.
3: रफी साहब क्लासिक.
2: जी.
3: Please bear with me. If I make any mistake, please forgive me.
2: सर जी, प्लीज ऐसी बातें ना करें कि किया करें मेरे साथ, आप मेरे भाई गो हेड, ये ऐसे नहीं बातें कि यहाँ पे आप आ रहे हैं, माशाल्लाह एक महफिल हो रही है, खूबसूरत महफिल हो रही है, तो ऐसे मुझसे अपोलोजाइज ना किया करें प्लीज।
3: इंशाल्लाह, हियर वी गो।
2: वाह क्या कहने,
3: चल के तेरी चल के तेरी आंखों से शराब ओ ज़्यादा के तेरी आंखों से शराब ओ ज़्यादा चल के तेरी आंखों से शराब ओ ज़्यादा खिलते रहे होंठों के लब ओ ज़्यादा के तेरी आँखों से लब ओ ज़्यादा।
2: Beautiful.

क्या बात है जाने तेरी महफिल में मंगल।

ज्यादा के तेरी आंखों से राब ज्यादा

गुरु की खटारे को तो आप ज्यादा छलके तेरी आँखों से आप ज्यादा

0: ज्यादा के तेरी आंखों से सांस ओ ज्यादा तेरे होठों के सांस ओ ज्यादा।
1: वाह वाह क्या कहने। बहुत खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज है, जो गाना भी चुना है बहुत मुश्किल गीत था और वेरी नाइस ट्रैक रिजल्ट, बहुत खूबसूरत, वाह क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ रेस्ट ऑफ द इवनिंग, फैंटास्टिक इवनिंग रिजल्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और आई विल सी अगेन इंशाल्लाह संडे इवनिंग, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके ओके अल्लाह। Right, that was a gentleman, mashallah, Shahid Ehsan. Oh, what a gentleman, mashallah. What a beautiful work he's got on Boba Shukriya. Inka jo aaye aur inne mujhe kimti waqt diya, Boba Shukriya inka. Aur yahan pe humne karna.
2: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
1: Now, time in the studio is 45 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep electronic, keep electronic with the Parviz Khan.
3: Sunrise Radio.
4: Of £7.70 for every pound spent. It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
1: और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और अब्दुल कय्यूम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर,
5: वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आज लाइन मिलेगी, इतना बिजी
1: आपके साथ, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद
5: रखिएगा। मैं भी लाइन में लग गया और मेरी भी बारी आ गई
1: माशाल्लाह,
5: लेकिन इससे पहले मैं कुछ अर्ज करूँ तमाम सुनने वालों को, जो इस वक्त
1: जी
5: घरों में, बाजारों में, दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में, टैक्सियों में, कारों में, होटलों में, रेस्टोरानों में, खेतों में, खलियानों, ये प्रोग्राम तो सारी दुनिया में सुना जा रहा है,
1: माशाल्लाह जी, ऐसी ऐसी ऐसी
5: वालों को सलाम अर्ज करता हूँ। जो
1: माशाल्लाह,
5: तो एक छोटी सी गजल है, उसके पास पहले कुछ इशार हैं।
1: जी जी।
5: गुफ्तगू इस तरह की जख्म गहरा कर दिया, गुफ्तगू कुछ इस तरह की जख्म गहरा कर दिया, रात उसने मेरा लहजा भी अफसुरदा कर दिया, और पहले सह में बैठ कर फरमाइश इशार की, कल भरी महफिल में उसने मुझको तन्हा
1: कर दिया। आहा, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब।
5: एक गजल है अगर इजाजत
1: दें। जी जी, अर्शाद अर्शाद।
5: जी जी
1: जी।
5: क्या पास वफा था कि निभाने भी ना आए, जी क्या पास वफा था कि निभाने भी ना आए, तुम शम्मा तमन्ना को बुझाने भी ना
1: आए,
5: क्या पास वफा था कि निभाने भी ना आए, तुम शम्मा तमन्ना को बुझाने भी ना आए, और शेरे मुरझा भी गया शाखे तलब पर गुले उम्मीद, और तुमको के यादत के बहाने भी ना आए,
1: वाह क्या कह रहे,
5: मुरझा भी गया शाखे तलब पर गुले उम्मीद, और तुम के यादत के बहाने भी ना आए, और दिल ने भी ऋतु से कोई लम्हा नहीं मांगा, दिल ने भी ऋतु से कोई लम्हा नहीं मांगा, फिर लौट के कुर्बत के जमाने भी ना आए, शुक्रिया जनाब, दिल ने कभी ऋतु से कोई लम्हा नहीं मांगा, फिर लौट के कुर्बत के जमाने भी ना आए, और शेर है आंखों में सितारे भी न चमके उसे मिलकर, सितारों में आंखों में सितारे भी न चमके उसे मिलकर, होंठों पे जुदाई के अफसाने भी ना आए।
1: वाह क्या कह रही।
5: आंखों में सितारे भी न चमके उसे मिलकर, होंठों पे जुदाई के अफसाने भी ना आए। और कुछ पुरसश यारों के भी अंदाज अजब थे, कुछ पुरसश यारों के अंदाज भी अजब थे, और कुछ हमको तेरे जख्म दुखाने भी ना आए। और चेहरा तुमको वही दमखम है तेरे ना वो

0: तैयारी करके जिस इलाके में जा रहे
1: हैं, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और मुझसे मेरी तरफ से अगर किसी के शाम में गुस्ताखी कोई कुत्ता है तो मैं दोनों आज और के
0: क्या कहने। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शादी के खैर खरी जाएं और खैर खरी के वापस आए, हमारी दुआ आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान जा रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें वेल के क्या कहेंगे खुदा हाफिज़ की है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और हमें भी दुख हो रहा है, मलाल हो रहा है कि हम इनके भाई को मिस करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मीठा जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पर, और हमारे मीठा जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: जनाब मोहतरम अली, जनाब इज्जत वाब साहब, सदर ग्रामी कदर, हर दिल अजीज शख्सियत, मेरे चैंपियन भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और यहाँ पे मेरे भाई हमेशा ही मुझे चैंपियन कहते हैं, सब दुनिया को पता है और जिनको नहीं पता वो सुन लें, और ये मेरे भाई हैं मीठा जी हैं, और मीठा जी हमेशा ही मुझे कहते हैं चैंपियन, और डॉक्टर मालिक साहब उन्होंने भी मुझे चैंपियन शुरू कर दिया नाम, और बहुत अच्छा लगता है। और आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है मेरे भाई की?
2: अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो चैंपियन मैंने आगे भी अर्ज की है कि चैंपियन जो है ना सरकार, वो एक ब्रांड है।
0: आए, आए, आए, आए, मेरे भाई ना ना तारीफ ना करें मेरे भाई, ये ना हो कि कुछ रात को नींद ना आए किसी को तो बड़ा मसला हो जाएगा।
2: सर पता है क्या, अल्लाह ताला अगर नींद ना आए तो गोलियां भी तो दी हुई है ना
0: ओए ओए ओए, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कोई गोली ऐसे भी है कि जो सुबह जल्दी जागे वो भी गोली है कोई?
2: नहीं, वो अलार्म लगा लेना।
0: ओए होए, चलो ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं कुछ कहने वाला था, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप मेरे टाइम बहुत कम है और मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि आप आ गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हाजिरी लगाई है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और हमारे जो हमारे मुर्शिद हैं और उनको आज लाइन नहीं मिली है तो मुझे बहुत ही मलाल हुआ है, मुझे दुख हुआ है।
2: सर यकीन करें कि हम भी बहुत मुश्ताक होते हैं उनको सुनने का, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि क्योंकि
0: देखो इतना बिजी होता है माशाल्लाह, देखो कि उनकी इतनी खूबसूरती है उनके अंदर में कि माशाल्लाह, और हमेशा ही मेरे लिए दुआएं करते हैं और हमेशा ही मेरे लिए, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये हो गया वो हो गया, कभी उन्होंने गिला नहीं किया, कभी उन्हें शिकवा नहीं किया, और मैं उनका शुक्र गुजार हूँ। काश सारी दुनिया में ऐसे और आप जैसे लोग होते, हमेशा कहते हैं जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। बाकी
2: सर मैं मोहतरम सामीन जितने भी सुन रहे हैं ना, मोहतरम सामीन जो चैंपियन भाई कह रहे हैं ना, ये इनकी अच्छाई है लेकिन सच्चाई कुछ और है। यकीन करें ये जो बयान कर रहे हैं ना, ये जो फरमा रहे हैं ना मेरे बारे में ना चीज के बारे में, ये इनकी अच्छाई और बड़ा पन है जो मेरे जैसे हकीर, मेरे जैसे अदना और मेरे जैसे इंकसार बंदे के बारे में ये कह रहे हैं, ये इनकी अच्छाई है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नायत गुनागार हूँ। यकीन करें कि मैं जितने आपके यानी के आ चुके हैं माशाल्लाह, ये सभी मुझसे अफजल और आला हैं,
0: सब खूबसूरत हैं, सब जो है ना यहाँ जो भी महफिल में आते हैं यहाँ माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह, और सपोर्ट करते हैं। और हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं रॉबिन साहब, जो न्यूयॉर्क में हमारा प्रोग्राम सुनना जा रहा है और वहाँ पे सुनते हैं, और उन्होंने आपके लिए खसूस, उन्होंने आपके लिए पूछा, हाल वाल पूछा, उनको खुशी हुई है कि उनको भी पता लग गया कि आप मुझे चैम्पियन कहते हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा। और कहते हैं कि यार देखो आपके जैसे सब जो है ना अच्छा आपको प्यार करते हैं, खूबसूरती आप में, तो ये आप दोस्तों का कमाल है, बिलीव करने के मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं मुझे फ़ख्र होता है कि हमने आप जैसे दोस्तों के साथ बैठ के वफा सीखी है और वफा सीख के सीख रहे हैं माशाल्लाह, और जिसको हम मानते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी घराना ही खूबसूरत है, हम उस दरवाजे के नौकर हैं, मैं खुद एक नौकर हूँ माशाल्लाह, और आप मेरे पीर भाई हैं, तो ये खूबसूरती है।
2: अल्लाह ताला आपको सलामत रहे। आप जो फरमा रहे हैं ना, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन एक बात आपके सामेईन को भी मैं ये आपके गोश गुजार करूं, मैं अर्ज करूं ना कि मैं आज जो आपके साथ हूं, जो लोग मुझे मेरी पहचान बने हैं ना, वो आपका सनराइज रेडियो है जिसकी वजह से लोग मुझे जानते
0: हैं।
2: इनके मेरे जैसे छोटे बंदे को तो मैनचेस्टर में क्या, मुझे मेरी गली में

0: बंदा नहीं जानता कि कोई रुखसार भी है। मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, यकीन करें।
1: रुखार भाई, मैं यहाँ पे मैं कतकलाम में माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि ऐसी बातें ना कि आप ऐसी बातें ना किया करें मेरे भाई। और मैं जो ना मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनका आपका दोस्तों का तल्लक है वो मैं भी जानता हूँ उनको, और वो मुझे भी जानते हैं माशाल्लाह। आपका एक खूबसूरती है, मैं हमेशा में कहता हूँ कि अच्छे लोग हो ना तो वहाँ पर दूर दूर से पहचान जाता है अच्छे लोगों को।
0: अच्छा सबीन सचिव, मैं आपको ये बात कहूँ की जो चैंपियन यार है ना मेरा, यकीन करें कि वो मेरे गांव का एक बंदा है। चैंपियन भाई ने मेरे बारे में उस बंदे से पूछा कि ये रुखसार कौन है।
1: ये बातें कुछ बातें होती है ना, वो राज की देने दो, ये ना किया
0: इन्होंने उस बंदे से पूछा, क्योंकि वो भी मीडिया से है, वो भी टीवी पे आता जाता रहता है, तो वो मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्त है। तो चैंपियन ने पूछा कि ये रुखसार कौन है, उन्होंने बोला अच्छा ये चेचिया ना मुड़ा।
1: नहीं वो पता है कि वो आपके साथ हैं, वो प्यार मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे पता कि वो लेग आपको पुल करेंगे, तो मैंने जानबूझ के मैंने कहा उनको जानबूझ, मुझे पता था कि वो
0: उसने मुझे बोला, उसने बोला भाई रुख सर आप जानते हो परवेज भाई को। मैंने बोला यार परवेज मैं बोलो उसको चैंपियन बोलो, वो मेरा चैंपियन है, मेरा बड़ा अच्छा यार है।
1: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब माशाल्लाह ये आप दोस्तों का कमाल है। और हमारे जो माशाल्लाह जो मैनचेस्टर वाले माशाल्लाह सब अच्छे हैं और खूबसूरत हैं। और जब भी मैं महफिल में किसी रोज वहाँ जाता रहता हूँ, वहाँ पे मैनचेस्टर में ब्लैकबर्न में और मुलाकात होती रहती है, क्योंकि वो भी एक मीडिया की पर्सनैलिटी है, हम भी मीडिया के हैं, तो एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ मिलना जुलना एक खूबसूरती होती है कि सब भाइयों के साथ प्यार करते हैं, भाइयों के साथ सबके।
0: मैं उसका नाम
1: ही नाम लेने की लूंगा, ये जो राज होता है ना ये राज रहने दो यहाँ पे रहने दो, ये ना हो कि पता है कि वो कल किसी को वो पूछ जाए वहाँ पे, क्योंकि वो भी ईजी है ना, वो भी मिलना जुलना उसके साथ, वो भी किसी को भी पूछेंगे तो वो बता देंगे कि यहाँ पे वो कहाँ पे रह रहे हैं मेरे भाई।
0: इसीलिए वो कहते हैं ना कि ये बात सीखा राज में रहने दो।
1: मेरे भाई हम बातें भी करते रहेंगे तो देखो मेरे पास 2 मिनट रह गए।
0: अल्लाह कोई सर जी पता क्या मेरा मकसद सिर्फ पता क्या, मैं बहुत मुश्ताक होता हूँ कि आप जैसे माशाल्लाह इतनी अच्छी हस्तियाँ आई थी सुनने के लिए, मेरा मकसद सिर्फ था कि आपकी हाजिरी हो जाए, बस ये बड़ा है, क्योंकि आपका जो रजिस्टर है ना,
1: मैं पुराना बंदा हूँ और पुराना सोच है मेरी, तो रजिस्टर आपको पता हाजिरी लगाता हूँ, हाजिरी लगा रहा हूँ तो फिर मुझे मलाल होता है कोई बंदा ना आए या कोई, इसलिए फिर मलाल होता है, दुख होता है कि यार फलाना बंदा नहीं है, फलाना की ये नहीं है, और ऐसा ही हो जाता है कि हमारे आपको पता है कि उस इलाके के देखो हमारे चौधरी फिराज साहब की कोई लाइन का मसला हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में, वो लाइनें वो फ़ोन करते हैं लाइन ड्रॉप हो जाती है, तो वो बड़ा मसला हो रहा है, ये आप ही थोड़ा जी पर्ची वहाँ पे डालें यार कि यार मसले को हल करें।
0: प्यार करने वाले यकीन करें कि रुखसार नहीं था तब भी ये चैनल था, रुखसार है तब भी सनराइज है, रुखसार नहीं होगा तब भी कर्म फजल से ये सनराइज रहेगा और इसके समीन रहेंगे।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई शक नहीं, कोई
0: इनके साथ हैं, अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे। अतीका आपी की जो पूरी लिस्ट है ना सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा बहुत बहुत सलाम। तो ये छोटी सी मैं पोएट्री है बस एक मिनट के नहीं
1: मैं जी जी शुरू करें बिस्मिल्लाह करें,
0: पंजाबी की है ये
1: जी
0: पहला कहें दे दीदी मस्जिद दा
1: आहा
0: कोई गलत इमाम ना होवे
1: हाय हाय
0: शाला रब साईं पर्दे कैम रखे बंदा खास इमाम ना होवे
1: हाय हाय
0: रंज होवे पे खैर सल्ला रंज होवन पे खैर सल्ला शाला निखड़े आ शाम ना होवे
1: वाह वाह
0: ता मुक्कियां दा शाकर दुख कोई नहीं शाला खत्म सलाम ना होवे
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूबसूरत बहुत गहरा
0: बहुत शुक्रिया सर
1: जी आपको टाइमिंग जो है ना आपकी परफेक्ट टाइमिंग बहुत ही शुक्रिया और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच और आप मेरे भाई यहाँ पे आ जाए यहाँ पे बैठ जाए मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपको सलाम करूंगे आप बैठे हैं तो मैं बैठा हूँ तो समझ लो कि एक ही
1: बात है माशाल्लाह ओके अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ शब खैर बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. on the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: From Sky News Centre at 11. The boss of OpenAI says he believes the best version of artificial intelligence is one that gives people more agency in a complex world. Sam Altman has been addressing the UN Security Council following concerns AI technologies could soon improve themselves and slip beyond human control. The Prime Minister wants stricter regulation to stop the spread of rogue systems.
4: As His Majesty said, the task before us is not merely to advance technology, but to ensure that it remains firmly in the service of humanity.
3: Iran's president says Tehran will not surrender in war with the US, but he does in diplomacy. Masoud Pezeshkian claims his people have been the victims of terrorism during the conflict and won't be bullied by American negotiators. His speech prompted the US delegation to walk out of the UN General Assembly in New York. Secretary of State Marco Rubio insists they want to see an end to the war.
5: The president's open still to this moment to making a deal with Iran that allows Iran to be what it should be, which is a great and prosperous country. But if they continue to insist on the desire for a nuclear weapon, their support of terrorism, they're the world's leading sponsor of terrorism, then we're going to have big problems with them.
3: Three people have been charged with assaulting an emergency worker after a group of protesters gathered in Hampshire. It was ahead of the expected arrival of a boat carrying migrants in Gosport yesterday that headed along the coast to Dover instead. Andy Burnham says it's not fair for football fans in the UK to be banned from drinking alcohol in their seats at matches. The Prime Minister is confident there is a case to remove the legislation, which he says amounts to discrimination, and that a trial could be introduced. And in sport, Chelsea have started their Women's Champions League campaign with an unconvincing 1-0 win against Austria Vienna. Vika Kapteyn scored the only goal of the game. That's the latest. I'm Daisy Steele.

के कुछ मुस्कुरा के सा किया, चूम के कुछ संग के कुछ मुस्कुरा के सा किया, इनकार कर दे पर जरा नजरा मिला के सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, ते फिर मेरी याद जो भूल जा फड़ा के।